0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 75.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: एक बहुत ही मतलब उंदा जिसको कहते हैं वो सवाल पूछूं, क्या 90s में आपको पता था कि आप 90s में जी रहे हैं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा यहाँ पर 90s वाली बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। शुरू हो चुका है ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मस्ती 90s मिक्स टेप। मतलब सीरियसली, क्या कभी स्कूल से घर आते हुए हमने ये सोचा कि वाओ, क्या आइकॉनिक डेकेड में आई एम काइंड ऑफ लिविंग थ्रू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस बड़े हो रहे थे, जो आसपास था वही नॉर्मल था, जो फैशन पहना वही कूल था, जो गाना बज रहा था वही लेटेस्ट था, जो फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई उसकी कहानी मंडे तक पूरे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक पहुंच जाया करती थी, और बॉलीवुड बॉस उस वक्त सटल तरीके से एक छुट्टी ही मान लो मानी जाती थी। कलर्स ब्राइट, शर्ट्स जो है ब्राइटर, डांस स्टेप्स फुल पावर, रोमांस फुल ड्रामेटिक, म्यूजिक में ढोलक भी, सिंथेसाइजर भी और फ्लूट भी, और जरूरत पड़े तो 40 वायलेंस भी साथ साथ में। And we loved it completely because nobody was trying to make life look aesthetic. Life was life thi. फोटो खराब आ गई तो आ गई, क्या कर सकते हैं। हेयर कट वियर्ड हो गया तो अब 3 महीने उसी के साथ जियो। किसी मोमेंट का वीडियो नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेमोरी में तो सेव हो गया। और परहैप्स दैट्स द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अबाउट ग्रोइंग अप, जिस वक्त को हमने कम्प्लीटली ऑर्डिनरी समझ कर जिया, उसी वक्त को एक छोटी सी चीज मिल जाए और हम वहां पे जो है रुक जाए कि अरे याद है, याद है। सो आज के मस्ती 90s मिक्स टेप में हम सब वो जो फेमस मेमोरीज, क्या मतलब आई थिंक जो मेमोरी हम उठाते हैं हमको लगता है कि यार क्या ही था। सो वेल, 90s के घरों से, गलियारों से, फैशन से, फूड से, एंड ऑफ कोर्स हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ऐसे किस्से और बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया से, जो स्क्रीन पर तो कभी नजर नहीं आए बिकॉज मे बी नॉस्टैल्जिया का ये सारा का सारा असली मजा इन्हीं सब चीजों में है, जब कोई आपको वो चीज याद दिला दे जो आपको याद भी नहीं था कि आप भूल चुके हैं। बातों की गहराई देख रहे हो आप, बोलते हुए कैसे एकदम फ्लो में आती है मस्ती 90s मिक्सटेप में। चलिए भाई, 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक, एंड ब्रेक के उस पर मैं हाजिर, सो स्टे ट्यून्ड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की कौन है मम्मा?
2: ड्यूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आमिर खान wondered.
5: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
4: सलमान खान wanted answers.
6: कैसे किया ये?
4: R. Madhavan said.
7: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
4: And Boman Irani?
8: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
4: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
9: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
4: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
10: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: कैची जिसको कहते हैं हम, उसको लाने का पेशेंस किसके पास था? हमारी जुबान ही कैची की जैसी है। लिटरली हमने कितनी बार उसको प्रूव किया होगा 90s में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव में अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। दैट इज राइट। मतलब शैम्पू का सैशे जो होता है भाई, हम वो 90s वाले हैं जिन्होंने सैशेज यूज किए हुए हैं सनसिल्क क्लिनिक प्लस के। दैट इज राइट भाई। शैम्पू सैशे कभी सिजर्स से आपने खोला है? हमने तो नहीं। मेरे को तो याद नहीं कि कब हमने सिजर्स का यूज किया हो उसको खोलने के लिए। मतलब टेक्निकली पैकेट के कॉर्नर पर वो छोटा सा कट बना होता था, राइट, जिसका पर्पज था कि टियर फ्रॉम हेयर, राइट। लेकिन हमारे होते थे गीले हाथ, शैम्पू का सैशे हाथ में, और बाथरूम में खड़े खड़े सीधा दांतों के कॉर्नर से कचैक करके सिजर लेने के लिए बाथरूम से बाहर कौन जाएगा उस वक्त? इतना ऑर्गेनाइज बचपन थोड़ी ना था हमारा। और वो भी मतलब क्या ही जमाना था इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट। बाथरूम की शेल्फ पर बड़े बड़े फैंसी पंप बॉटल्स की लाइन बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। छोटे छोटे शैम्पू सैशेज पड़े होते थे, क्लिनिक पल्स, सनसिल्क, हैलो करके भी एक आता था। और कभी वो सैशे जिसका टीवी का एड देखकर मम्मी ने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, एक सैशे निकाला, कॉर्नर काटा और फिर शैम्पू निकालने का भी पूरा प्रॉपर टेक्निक था। पहले टॉप से स्क्वीज, ठीक है, फिर फिंगर से पैकेट को नीचे तक प्रेस करो, फिर उसको फोल्ड करो, फिर एक फाइनल स्क्वीज। एक बूंद भी अंदर नहीं रहनी चाहिए थी बॉस। और अगर शैम्पू कम निकला तो पानी सैशे के अंदर, एंड देन शेक शेक शेक, एंड लो जी बोनस शैम्पू आपके लिए। 90s के बच्चों को रिसोर्स मैनेजमेंट किसी MBA ने नहीं सिखाया, ये सब ट्रेनिंग घर पर ही हो गई थी हमारी। और वैसे भी शैम्पू के जो सैशेज का इंडियन स्टोरी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एंगल भी है। सो 90s के इंडिया में स्मॉल सैशे पैकेजिंग ने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल जो है वो बना दिया, एंड स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास की जनता जो है उनके लिए। फुल बॉटल लेने के बजाय लोग एक या दो वॉशेस के लिए छोटा सा सैशे खरीद लेते थे। मतलब वो वही छोटा सा प्यारा सा, सिर्फ बाथरूम की मेमोरी नहीं, 90s के चेंजिंग इंडियन कंज्यूमर कल्चर का भी एक बड़ा हिस्सा था वो। लेकिन हम बच्चों की इकोनॉमिक से हमें क्या ही लेना देना था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारा प्रॉब्लम तो एक ही था कि सैशे और गीले हाथ, कॉर्नर फट नहीं रहा है, सोल्यूशन दांत है ना। और कभी कभी तो शैम्पू मुंह में भी चला जाता था, क्योंकि जहां से टियर हेयर लिखा होता था वहां से कभी भी टियर नहीं हो पाता था दांतों से। बट एनीवेज, 90s का कन्वीनियंस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, जो हाथ से ना खुले उसमें दांत लगा दो। वाह वाह वाह वाह, इसी बात पे दांत देती हुई आ रही है एक 90s वाली म्यूजिकल ब्रेक। वाह वाह।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Musty 24/7. Musti pe Bhakti, subah 6 baje se.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। नाइन्टीज के किसी भी बच्चे को एक सिक्का दो, एक पेंसिल दो और भर आर्टिस्ट हमारे अंदर का बिल्कुल तैयार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप यहाँ पर चल रहा है। 90s के बच्चों की क्रिएटिविटी का लेवल समझना अगर है तो हमें फैंसी आर्ट किट की इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं थी। बस आप हमें एक कॉइन दे दो, एक पेपर दे दो और एक पेंसिल दे दो, एंटरटेनमेंट ऐसे ही रेडी कर देंगे। याद आया कुछ? कॉइन को पेपर के नीचे रखा, पेपर को एक हाथ से टाइटली पकड़ा और पेंसिल को सीधा लिखने की जगह साइडवेज करके उसको रब करना शुरू किया। शुरू में तो कुछ रैंडम ग्रे लाइंस एंड फिर धीरे धीरे कॉइन का बॉर्डर नजर आने लगता था, फिर नंबर आने नजर लगता था और फिर डिजाइन, राइट? फिर सडनली पूरा सिक्का जो है पेपर पर छप जाता था एंड रिएक्शन, ओ देखा आ गया ना, जैसे दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस हमने ही इन्वेंट कर दिया हो। फिर ऑब्वियसली एक कॉइन पर एक्सपेरिमेंट रुकता थोड़ी ना था, एक रुपए वाला करो, फिर 50 पैसे वाला करो, फिर 25 पैसे का मिल गया तो वो भी कर लो और डिफरेंट कॉइन्स के जो है उसको भी साइड बाय साइड जो है रब करके वैसे करके भी अपनी मिनी करेंसी एग्जिबिशन जो है वो हम ऐसे ही रेडी कर लिया करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, पेंसिल बहुत हार्ड नहीं चलानी है वरना पेपर फट जाएगा, बहुत लाइट भी नहीं चलानी है वरना उसका इंप्रेशन नहीं आएगा। मतलब विदाउट नोइंग इट हम प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिकल क्लास ले रहे थे। फिर एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेवल पर जाता था, कॉइन हो गया, अब पत्ता यानी कि लीफ ट्राई करो, पत्ता पेपर के नीचे पेंसिल रब करो और उसकी वेन्स सडनली पेपर पर अपीयर होने लगते हैं। आपने कभी किया ये? आई मीन आई हैव डन इट अ लॉट सो आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम ऑफिशियली आर्टिस्ट अपने आप को यही सब करके बुला लेते थे। आजकल बच्चों के पास डिजिटल ड्राइंग पैड्स है, स्टाइलस है, एप्स है, अंडू बटन है। हमारे पास अंडू बटन नहीं था बॉस, गलत हो गया तो नया पेपर लाओ। बट दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दोज मेमोरीज। बोर्डम आता था तो इमीडिएटली स्क्रीन नहीं खुलती थी, दिमाग खुल जाता था। किसी ऑर्डिनरी सी चीज को उठाओ, उसके साथ कुछ करो और खुद ही अपना एंटरटेनमेंट बना लो। एक सिक्का, एक पेंसिल, एक पीस ऑफ पेपर, बस इतना ही तो था। लेकिन पता नहीं क्यों उस कॉइन को पेपर पर मैजिकली उभरते देखने की खुशी आज भी मेमोरी में बिल्कुल क्लियर प्रिंट हुई पड़ी है, न जाने क्यों। स्टे ट्यून्ड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी कौन है मम्मा?
2: ड्यूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस डियर मस्ती दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस डियर मस्ती दिल से।
0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। नाइन्टीज के घरों में एक फिलोसफी बहुत क्लियर थी, जब तक चीज कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए वो खत्म नहीं होती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा आपके साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। ऑफ कोर्स मैं हूँ 90s वाली अंतरा, और इसी बात का सबसे बड़ा एग्जांपल था बाथरूम का हमारा साबुन। लाइफ बॉय हो, पियर्स हो, सिंथॉल हो, लक्स हो, रेक्सोना हो, नया साबुन तब तक ऑफिशियली चार्ज नहीं लेता था जब तक पुराने वाले की लास्ट ड्यूटी कम्प्लीट ना हो जाए। एक दूसरे से लिपट के रहते थे, और वो लिपट लिपट के जो है ना एक नया ही साबुन बना दिया करते थे। क्योंकि क्या है ना, साबुन 90s में यूज होते होते इतना छोटा हो जाता था कि हाथ में पकड़ो तो फिंगर्स के बीच में से फिस करके फिसल गया, ठीक है। फिर वो या तो नीचे गिर जाता, उसको उठाने में भी कितनी ज्यादा दिक्कत होती थी, सीधा या तो बकेट में गिर जाए तो वो भी। अब नॉर्मल इंसान सोचेगा कि भाई इसका काम खत्म हो गया, नया निकालो। 90s की मम्मियां, एब्सोल्युटली नॉट। नया सोप निकला,

दोनों को थोड़ा थोड़ा गीला किया, पुराने छोटे से सोप को नए वाले के ऊपर रखा और चिपका दो। बस पुराने सोप को मिल गया सर्विस एक्सटेंशन और अगले दिन बाथरूम जाओ तो एक फैसिनेटिंग सी हाइब्रिड सोप जो है हमें रेडी मिलती थी। नीचे ब्रांड न्यू लक्स, ऊपर चिपका हुआ एक मिस्टीरियस सा पुराना पीस, कभी प्रॉपरली चिपक जाता था, कभी नहाते वक्त जो है फिर अलग हो जाता था, फिर हम दोबारा प्रेस करके उसको चिपका देते थे। इट वॉज बेसिकली 90s का मर्जर एंड एक्विजिशन। और सिर्फ सोप ही क्यों, टूथपेस्ट के ट्यूब को रोल कर करके लास्ट बिट निकालना, क्रीम की बॉटल उल्टी रख देना, ठीक है, देन पेन को झटका मार मार के लास्ट लाइन लिखना। सो 90s की जनरेशन का सिंपल सा एक फंडा था, अभी इसमें थोड़ी और जान बाकी है। आज हम इससे सस्टेनेबिलिटी, रीयूज, कॉन्शियस कंजम्पशन जैसे फैंसी नेम्स दे देते हैं, लेकिन तब मम्मी का एक ही सेंटेंस काफी होता था कि अरे पहले पुराना तो खत्म करो। सच कहूँ शायद इसीलिए 90s की मेमोरीज की चीजों में जो है ना बहुत ही ज्यादा वैल्यू अलग सी ही लगती थी। हम नए का एक्साइटमेंट रखते जरूर थे लेकिन पुराने को भी साथ में रखते थे, लास्ट बबल तक छोड़ते नहीं थे। क्या करें, आई थिंक वो चीज आज की डेट में भी हमारे अंदर एकदम घोट घोट के, मतलब मैं टिल डेट राइट टूथपेस्ट जो हमारा है, जब तक बेचारा कह नहीं देता है कि बस करो बहन अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तब तक मैं उसमें से निकालती ही रहती एंड समहाउ निकल भी आता है, लाइक आई डू विद द क्रीम्स ऑल्सो। मैं तो बीच में से काट देती हूँ और फिर अंदर से स्क्रेप कर करके जो है ना वो निकालती हूँ। काफी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ना आई स्टिल यूज इट लाइक दैट, आई मीन वाई नॉट, जब पता है हम आर्टिस्ट हैं तो वाई नॉट मेक यूज ऑफ दैट स्किल। स्टे ट्यून्ड, मस्ती 90s मिक्सटेप सुन रहे हो आप।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। तरह तरह के शेप्स के आजकल आइस क्यूब्स निकलते हैं, राउंड एंड बिग क्यूब्स एंड एवरीथिंग, एंड इतने स्टाइलिश, इतने प्रिटी लगते हैं ना, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या करें, हम उस टाइम से है, आई थिंक वी हैव जस्ट काइंड ऑफ सीन इट ऑल। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ, एंड यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई फ्रीजर खोलो, सिलिकॉन का वो आइस ट्रे निकालो, कोई भी शेप का हो, एंड एक हल्का सा पुश एंड प्लॉप, परफेक्ट आइस क्यूब आपका निकल आता था। बट 90s वालों, हमने इतनी ईजी लाइफ कहाँ देखी थी। हमारे फ्रीजर में होती थी वो स्टील या एल्यूमिनियम की आइस ट्रे, ठीक है, और उसमें से बर्फ निकालना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले का फुल बॉडी वर्कआउट हुआ करता था, वर्कआउट। ट्रे फ्रीजर से निकालो, और पहले तो वो इतनी ठंडी कि हाथ ही फ्रीज हो जाते थे हमारे। फिर ट्रे को ट्विस्ट करने की कोशिश, एक तरफ से दूसरी तरफ से, कुछ नहीं हुआ। काउंटर पे फिर टाक टाक टाक करके मारा, स्टिल नथिंग। फिर मम्मी का ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन, नीचे थोड़ा उसके पानी चलाओ टैप के नीचे, ट्रे थोड़ा सा वेट, फिर दोबारा ट्विस्ट, एंड सडनली क्रैक, सारे क्यूब्स एक साथ लूज हो जाया करते थे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 इसमें ये आती थी कि हमें चाहिए थे 4 क्यूब, बाहर आ गए 12 क्यूब, 2 ग्लास में, 3 सिंक में, 1 फ्लोर पर, और 1 का पता नहीं कहाँ ही गया है वो। और अगर घर में गेस्ट आए हो तो प्रेशर डबल होता था, मम्मी किचन से जल्दी आइस निकालो, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है, और हम ट्रे के साथ वहाँ पे WWE खेल रहे होते थे। वैसे समर आफ्टरनून्स में उस आइस की वैल्यू भी कुछ और ही हुआ करती थी, नहीं, रूह अफजा हो, नींबू पानी हो, रसना हो, या वो एक स्पेशल ओकेजन वाली कोल्ड ड्रिंक हो। ग्लास में आइस गिरने की वो क्लिंक क्लिंक की वो जो आवाज थी, ड्रिंक ऑटोमेटिकली प्रीमियम लगती थी उससे। और ट्रे रिफिल करना उसको याद किया है आपने कभी, चलिए साथ में याद करते हैं। बिल्कुल केयरफुली फ्रीजर तक उसको ले जाना, एक बूंद नहीं स्पिल होनी चाहिए। फिर फ्रीजर के डोर को धीरे से बंद करना, तब जाके होता था हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड। आज आइस मेकर्स है, फैंसी डिस्पेंसर्स है, एक बटन दबाओ आइस रेडी हो जाता है। लेकिन 90s के बच्चों को पता है कि एक चिल्ड ड्रिंक के पीछे मेहनत, टेक्निक और थोड़ा सा रेसलिंग एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती थी, एंड इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ी ज्यादा ठंडी लगती थी और उसकी खुशी थोड़ी ज्यादा स्वीट। है ना, याद हो गया ना, ताजा हो गई ना। बस यही तो काम है मेरा मस्ती 90s मिक्स टेप में। रहिए मेरे साथ, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे एक 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
5: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: I used to hate doodh pe malai and I till date I kind of don't like it. Radio Masti 24/7 live antra aapke saath Masti 90s mixtape aap sun rahe ho yahan par. Bada hi serious sa childhood question hai mera. Doodh pasand nahi tha. राइट या दूध के ऊपर वो फ्लोटिंग मलाई पसंद नहीं थी. आई एम दी अदर वन. लाइक दूध तो जैसे तैसे करके पी लिया लेकिन वो मलाई के पता नहीं मुझे कुछ हो ही जाता था. लगता था कि बस ये नहीं चाहिए. मैं तो उसको स्पून से लेकर हटा देती थी लेकिन मम्मी वो भी बचा लेती थी बिकॉज वो बूंद बूंद से जो है मलाई ले लेके वो उनके घी बनता था घर पे तो उतना मलाई भी वो जाने नहीं देती थी कभी कभी. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मम्मी इसको तो छोड़ देते बिकॉज सी देयर इज अ डिफरेंस. 90s के मॉर्निंग में मम्मी ग्लास लेकर आई कि भाई दूध पी लो और हम दूध पीने से पहले ग्लास का फुल इंस्पेक्शन पहले करते थे कि भाई ऊपर मलाई तो नहीं है. अगर छोटा सा एक वाइट पैच भी फ्लोटिंग दिख गया तो बस इसमें मलाई है. एंड देन माय मॉम्स स्टैंडर्ड रिस्पांस कुछ नहीं है सब पी जाओ सब ठीक है कुछ नहीं है. अब मुझे क्लियरली दिख रहा है वहां पे. फिर शुरू होती थी स्ट्रेटजी. ऑप्शन नंबर वन, उसको फूंक मार मार के ग्लास के दूसरे कॉर्नर में भेज दो और ऑपोजिट साइड से जो है वो दूध पी लो. ऑप्शन नंबर दो, स्पून से चुपचाप निकालकर ग्लास के साइड पर चिपका दो जैसे एविडेंस हम वहां पे छुपा रहे हो. ऑप्शन नंबर तीन, और ये था एडवांस लेवल का ऑप्शन, दूध को एक ही फ्लो में ऐसे फिनिश कर दो कि मलाई को रिएक्ट करने का मौका ही ना मिले. लेकिन सबसे बड़ा बिट्रेयल जब मलाई दिखी ही नहीं और आप कॉन्फिडेंटली सिप लेते और सडनली आपको रियलाइज होता है कि ये तो छुपी हुई थी. बस गेम ओवर. और 90s के घर में दूध वैसे भी सिर्फ दूध कहां था, कभी बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और चॉकलेट पाउडर डालने का एक ही हिडन पर्पस ये भी था कि मलाई जो है ना वो कैमोफ्लेज हो जाए. आज सुपरमार्केट में चॉइसेस आप देखो, बाप रे बाप. ओके, फुल क्रीम, लो फैट, ओट मिल्क, आमंड मिल्क, स्किम्ड, लैक्टोज फ्री, ओ माय गॉड, सोय मिल्क. हम बचपन में चॉइस मतलब बहुत सिंपल थी, दूध पियोगे नहीं पीना पड़ेगा. ओके, बट यू नो व्हाट्स फनी, जिस ग्लास से बचने के लिए हमने बचपन में इतनी प्लानिंग की आज वही मेमोरी याद करके हमें स्माइल आ जाती है. बिकॉज 90s के चाइल्डहुड के ड्रामेज भी कितने ज्यादा इनोसेंट से थे. राइट, सुबह का बिगेस्ट क्राइसिस समटाइम्स बस इतना सा था कि मलाई मेरे ग्लास में तो नहीं है. बताओ, मुझे तो मलाई आज भी पसंद नहीं है कसम से, लेकिन मम्मी प्यार से बोल दे तो मैं पी ही जाती हूँ मलाई हटा के आज भी. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्सटेप पे बने रहिए मेरे साथ.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। कितनी देर हो गई 90s के बॉलीवुड की बात नहीं हुई, मुझे अजीब लग ही रहा था और लगने शुरू ही हुआ था कि मैंने कहा कि अभी वो वक्त है कि ये बात अभी कर लेनी चाहिए। वेलकम बैक मस्ती 90s मिक्स टेप में आपका बिल्कुल 90s वाली यात्रा करती है स्वागत, यह है रेडियो मस्ती 24/7। अच्छा 90s के बॉलीवुड फैंस, अगर मैं बोलूं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे तो भाई दिमाग में हम सभी के आते हैं सलमान खान एंड शाहरुख खान। अब इमेजिन कीजिए कि राखी जी का वही डायलॉग वो बोल रही है, शाहरुख खान तो आ रहे हैं लेकिन सलमान खान की जगह अजय देवगन आ रहे हैं। यस 1995 की करण अर्जुन की ओरिजिनल कास्टिंग में राकेश रोशन सर जो है उन्होंने शाहरुख खान और अजय देवगन को कास्ट इनिशियली किया था। एंड इंटरेस्टिंगली फिल्म का नाम तब करण अर्जुन नहीं था, दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड कायनात। इनफैक्ट राकेश रोशन जी जो है उन्होंने बाद में रिवील भी किया दैट अजय उस रोल में थे जो इवेंचुअली सलमान खान ने प्ले किया। लेकिन कहानी ये यहाँ पे जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग होती है, राकेश रोशन जी के अकॉर्डिंग शाहरुख खान और अजय अपने अपने कैरेक्टर्स को लेकर कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं थे और दोनों रोल्स को एक्सचेंज करना चाहते थे। डायरेक्टर रेडी नहीं हुए और इवेंचुअली दोनों प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। फिर कास्टिंग में और मूवमेंट हुई और फाइनली वो कॉम्बिनेशन बना जिसे 90s बॉलीवुड ने परमानेंटली मेमोरी में सेव कर लिया, सलमान खान एज करण एंड शाहरुख खान एज अर्जुन। अब जरा सोचिए अगर ओरिजिनल कास्टिंग रह जाती तो करण अर्जुन के पोस्टर, गाने, एक्शन सीन्स और वो एंटायर ब्रदरहुड वाली केमिस्ट्री कितनी ज्यादा डिफरेंट होती नहीं। और यही तो मुझे आई थिंक 90s के बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन्स की कहानियों में इतना फैसिनेटिंग लगता है कि हम जिस फिल्म को देखकर कहते हैं कि इस रोल में किसी और को इमेजिन करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है, समटाइम्स वो एक्टर एक्चुअली उसकी फर्स्ट चॉइस होती ही नहीं थी। सिनेमा में एक कास्टिंग का डिसीजन, एक डेट का प्रॉब्लम, एक क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट और पूरी पॉप कल्चर हिस्ट्री जो है उसको बदल देती थी। बिकॉज टुडे करण अर्जुन बोलो तो सलमान और शाहरुख खान के बिना पिक्चर तो कंप्लीट ही नहीं होती, लेकिन समवेयर इन बॉलीवुड्स ऑल्टरनेट 90s वाला यूनिवर्स करण अर्जुन, शाहरुख खान और अजय देवगन भी हो सकते हैं। नहीं यार, ना ना ना ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ हो सकते हैं?

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। आमिर खान wondered.
4: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: सलमान खान wanted answers.
5: कैसे किया ये?
0: आर माधवन said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: एक मिनट, क्या कह रहे हो यार, क्या कह रहे हो? मिलिंद सोमन होने वाला था वहां पे? मिलिंद सोमन? ओके, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। यूजुअली मैं कहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हम करण अर्जुन की बात कर रहे थे और हमने कहा कि भाई सलमान और शाहरुख ही सही लगते हैं करण और अर्जुन में, अजय देवगन को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिलिंद सोमन द सिनेरियो चेंजेस कंप्लीटली। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे मिलिंद सोमन इनकी जगह पे होने वाला था एंड हम कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो, वो क्यों नहीं हुआ फिर? आई लव हिम सो वेरी मच। सो वेल, जो जीता वही सिकंदर मूवी याद है, राइट? आमिर खान, संजू, आयशा जुल्का, पूजा बेदी, वो साइकिल रेस, वो कॉलेज की राइवलरी एंड ऑफकोर्स राजपूत कॉलेज का एरोगेंट चैंपियन शेखर मल्होत्रा। अब शेखर बोलो और दिमाग में आता है ऑफकोर्स दीपक तिजोरी का जो है चेहरा सामने आ जाता है, बट Here's the twist. Shekhar originally Deepak Tijori the hi nahi. The role had actually gone to Milind Soman. Aur sirf cast hi nahi hue the. Deepak Tijori ne saalon ke baad ye reveal kiya that Milind ke saath film mein around 75% ka jo portion hai shoot bhi ho chuka tha. Now imagine kariye 1992 wala mara Milind Soman, that model look, okay? Long hair, cycling champion, rich, arrogant Shekhar Malhotra. Character ka entire vibe hi different hota, boss. इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है ना, दीपक तिजोरी ने खुद ओरिजिनली इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था और वो रिजेक्ट हो गए थे। सो मिलिंद सोमन को रोल मिला, फिल्म का मेजर पोर्शन शूट हो चुका था, फिर प्रोडक्शन रुक गई और जब फिल्म इवेंचुअली दोबारा से मूव हुई, शेखर का रोल फाइनली गया उसी दीपक तिजोरी के पास जो पहले रिजेक्ट हो चुके थे। टॉक अबाउट बॉलीवुड की डेस्टिनी, आई टेल यू। और फिल्म जो है बाद में रिलीज हुई, दीपक तिजोरी वो स्मग सा शेखर, साइकिल पे वो कॉम्पिटिटिव सा एटीट्यूड, संजू के साथ राइवलरी, इतना परफेक्टली फिल्म का पार्ट वो बन गए थे सीमलेसली, राइट? कि आज किसी और एक्टर को उस रोल में इमेजिन करना थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बट मिलिंद सोमन ना, आई स्टिल थिंक ही वुड हैव लुक्ड बेटर। दैट्स द फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट मूवीज। हम स्क्रीन पर फाइनल वर्जन देखते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि यही तो पहले से ही प्लान था, बट बिहाइंड द फाइनल फ्रेम कभी एक्टर्स चेंज होते हैं, कभी सीन्स रीशूट होते हैं, कभी ऑलमोस्ट पूरी फिल्म का डायरेक्शन ही बदल जाता है, एंड समटाइम्स जो एक्टर पहले रिजेक्ट हुआ था वही इवेंचुअली रोल को आइकॉनिक बना देता है। सो यस, अगर आप कभी ऐसे वापस से जो जीता वही सिकंदर देखें शेखर मल्होत्रा को देखकर, एक बार इमेजिन जरूर करिएगा कि what if यहां पे मिलिंद सोमन होते। आई टेल यू, स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. 25.

पिंटरेस्ट बोर्ड क्या होता है? वो पिंटरेस्ट बोर्ड हमें नहीं पता था 90s में क्या होता है पिंटरेस्ट बोर्ड। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। भाई क्या होता था 90s का पिंटरेस्ट बोर्ड, सोच के बताओ। मैं बताऊं, 90s के घर का ड्रेसिंग टेबल याद है? वो सिर्फ रेडी होने की जगह नहीं थी, वो घर का अनऑफिशियल मेमोरी बोर्ड भी था। नो मिरर्स के कॉर्नर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ साथ मिलकर याद करें तो कहीं पर एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो टक्ड इन, स्पेशली गोदरेज के क्योंकि वो खाचे खाचे टाइप के होते थे ना, तो वहां पर टक इन होकर रखती थी। कहीं फैमिली की छोटी सी फोटोग्राफ लगी हुई है, कहीं किसी मंदिर से मिला हुआ जो है भगवान जी का कार्ड लगा हुआ है, कहीं विजिटिंग कार्ड लगा हुआ है, और कभी किसी बच्चे की स्कूल की फोटो लगी हुई है जो पता नहीं कितने सालों से वहां पर अटकी हुई है। कोई फ्रेम नहीं, कोई टेप नहीं, कोई फैंसी होल्डर नहीं, बस मिरर और वुडन फ्रेम या वो गोदरेज के मेटल फ्रेम के बीच में थोड़ा सा कॉर्नर मिला, फोटो वहीं पे घुसा दो। एंड वो आल्सो कॉर्नर होता था मेरी मम्मी के बिंदियों का। अलग अलग तरह की बिंदियां जो है, क्योंकि मम्मी सुबह ऑफिस जाती थी ना, तो अब पूरी पत्ता जो है बिंदी का कौन निकाले, राइट? तो वो वहीं पे साइड में उसर से ही रोज रोज रीयूज कर करके उसको लगाया जाता था। एंड पहले की पिक्चर्स भी उसमें जो लगी हुई होती थी पासपोर्ट साइज में, कोई एक्सप्रेशन पापा का सीरियस, मम्मी की आंखें आधी बंद है, किसी के पासपोर्ट फोटो में हम सीधे बैठे हुए हैं जैसे पासपोर्ट नहीं गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने गए हुए हो। बट एक्चुअली 90s में नोबडी केयर्ड, फोटो अच्छी है या इंस्टाग्राम वर्दी ये क्वेश्चन हम पूछते ही नहीं थे, अपने लोग हैं बस, इसीलिए फोटो काफी इंपॉर्टेंट थी। और ड्रेसिंग टेबल के आसपास भी पूरी एक दुनिया हुआ करती थी, कंघी, बिंदी का पैकेट, टैल्कम पाउडर, हेयर क्लिप्स, रबर बैंड्स, एंड ड्रॉर खोलो तो भगवान जाने क्या क्या नहीं होता था। बट मुझे सबसे बिल्कुल ही प्यारा वो शीशा, हमारा आईना जो है वो लगता था, बिकॉज एवरी मॉर्निंग मम्मी उसके सामने रेडी होती थी। एंड रिफ्लेक्शन के आसपास जो है अपने फेवरेट लोग ऑलरेडी जो है ऐसे मौजूद होते थे। हम मूड बोर्ड्स आजकल बनाते हैं, पिंटरेस्ट के बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, डिजिटल गैलरीज बनाते हैं, फोन में हजारों फोटोग्राफ्स हमारी सेव्ड हैं। 90s में फोटोग्राफ्स कम होती थी और फैमिली एल्बम्स और डिस्प्लेड फोटोज का अपना एक स्पेशल प्लेस होता था, और इसीलिए हर फोटोग्राफ की फिजिकल प्रेजेंस आई थिंक उस वक्त ज्यादा थी, कोई एल्बम में, कभी वॉलेट में, कभी किसी फ्रेम में, और कभी मम्मी के ड्रेसिंग टेबल के मिरर के कोने में। एक्चुअली पिंटरेस्ट बोर्ड से पहले हमारे घर की मेमोरीज पिन नहीं होती थी, टक होती थी। दो सुनो दिन नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, स्टे ट्यून्ड। Dumb.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
8: भाई की डन है मम्मा।
9: ड्यूटी?
10: लास्ट टाइम मैं उठा था ना।
9: मैं उठता।
7: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि,
2: टीना,
0: इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
3: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। 90s वालों, इस जनरेशन के ट्रस्ट इश्यूज डेटिंग ऐप से शुरू नहीं किए गए थे, बिल्कुल भी नहीं किए गए थे। हमारा ट्रस्ट इश्यूज, उसकी शुरुआत हुई थी फ्रिज या अलमारी में रखे वो स्टील के मिठाई के डब्बों से। ना इमेजिन करिए कि आप घर में कुछ मीठा ढूंढ रहे हैं और सडनली आपकी नजर पड़ती है एक ब्यूटीफुल से मिठाई के डब्बे के ऊपर। दिल में एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है कि ओ हो मिठाई। हम तो ना हम दूर से देख के रखते थे और हम नजर रखते थे, मैं और मेरा भाई, कि मम्मी कहाँ पे रख रही है। एंड दिल में ना एक्साइटमेंट ऐसी शुरू हो जाती थी कि अब हमें पता चल गया है, अब जब जैसे ही मम्मी नहीं होंगे, ऑफिस चल जाएंगे, तो हम उसको मिलकर दर दबोचेंगे। आप डब्बा नीचे उतारते हो, लिड उसका खोलते हो और अंदर से निकलता है क्या? सुई धागा, बटन मिठाई का है, नीडल्स, हुक्स, सेफ्टी पिंस और वो मेजरिंग टेप गोल गोल लपेटा हुआ। बिट्रेयल का लेवल बॉस एकदम मैक्सिमम। और सिर्फ स्विंग किट ही क्यों, 90s के घर में मिठाई के डब्बे की पॉसिबिलिटीज एंडलेस थी। कभी पुरानी रिसीट्स उसमें डाल देते थे, कभी मेडिसिन डाल के उसमें रखते थे, कभी पिक्चर फोटोग्राफ्स जो है वो डाल के रखते थे, कभी ग्रीटिंग कार्ड्स डाल के उसमें सजो के रखते थे, कभी रैंडम स्क्रूज एंड नेल्स उसमें रखा करते थे, और कभी वो मिसलेनियस कैटेगरी बन जाता था जिसका घर में कोई नहीं पता क्या होता था, कहाँ जाना है, लेकिन फेंकना अलाउड भी नहीं है, तो फिर वो उस डब्बे में चला जाएगा। और सबसे डेंजरस वो डब्बा जिस पर प्रिंटेड हो काजू कतली, है ना। आप एक्सपेक्टेशन लेके खोल रहे हो कि अंदर सिल्वर वाली वर्क वाली जो है हैप्पीनेस आपको मिलेगी, और मिलते हैं पापा के LIC के पेपर्स। एक्चुअली 90s घरों में पैकेजिंग का बड़ा ही सिंपल रूल था, डब्बा अच्छा है अगर तो संभाल के रख लो, बिकॉज अच्छा डब्बा कभी वेस्ट नहीं जा सकता। मेरे दोस्त, मिठाई खत्म हो गई लेकिन डब्बे की जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है। एंड द फनी थिंग इज, हम बचपन में इसे इरिटेटिंग समझते थे, आज अगर सोचो तो रीयूज और रीपर्पज का कंसेप्ट जो है घरों में कितना ज्यादा नेचुरली चलता था। कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी, कोई सस्टेनेबिलिटी का लेक्चर नहीं दे रहा होता था, बस मम्मी का डब्बा अच्छा है फेंकना मत, दैट्स ऑल। और मानना पड़ेगा उस एक सेंटेंस ने हमारी जनरेशन को मेंटली प्रिपेयर कर दिया, नेवर जज अ बॉक्स बाय इट्स कवर, बिकॉज 90s के घर में मिठाई के डब्बे में मिठाई मिल जाना ही एक्चुअली प्लॉट ट्विस्ट था। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती।

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ 90s वाली। और 90s में एमटी एक ओपिनियन था। आजकल बॉटल जो है खत्म होती है, पंप किया कुछ नहीं निकला, ओके फिनिश, सीदा उसका जगह होता है डस्टबिन में फेंक दो। 90s के घरों में, जैसे कि मैं आज वहीं पे बता रही थी ना वो सैशे के टाइम पर, कि एक्सक्यूज मी किसने डिक्लेयर किया कि ये खत्म हो गया है, बिकॉज 90s में एम्प्टी एक फैक्ट नहीं एक ओपिनियन हुआ करता था। शैम्पू की बॉटल को ही ले लो, अपना स्क्वीज किया, कुछ निकला नहीं, फिर मम्मी को दिया, खत्म हो गया, मम्मी बॉटल लेती उसको देखती और फिर वो लेजेंडरी सेंटेंस आता कि कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो बहुत है इसमें। हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि भाई उनको क्या दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। बॉटल तो खाली हमें दिख रही है। देन द टेक्निक वहां पर आती थी, थोड़ा सा पानी अंदर डालो कि बेटा इसको पूरा यूज कर लिया करो ना, कितना पैसा खर्चा होता है इस पे। कैप क्लोज किया, शेक शेक शेक शेक, और लो जी एक और शैम्पू का सेशन आपके लिए तैयार हो जाता था। एक्चुअली एक नहीं, कभी कभी मम्मी उसे दो और तीन बार भी चला लेती थी। डिश वॉशिंग लिक्विड सेम, बॉटल में पानी, शेक शेक शेक, बोनस राउंड। हैंड वॉश, पानी, हेयर कंडीशनर, बॉटल अपसाइड डाउन करो, लोशन के लिए उसको उल्टा करके पूरी रात रखो, सुबह देखो एक और एप्लीकेशन मैजिकली अवेलेबल। और टूथपेस्ट तो मैंने वो बता ही दिया था कि फोल्ड कर करके, फिर रोल करके, फिर प्रेस करके, फिर किसी हार्ड सरफेस से स्क्वीज करते, फिर जब हम बोल दे कि अब तो डेफिनेटली खत्म, देन आता था सीजर कि इसको काट दो। अंदर से इतना प्रोडक्ट निकलता था कसम से कि हम अपने ही जजमेंट पर डाउट करने लगे। सो 90s के घरों में एक चीज काफी नेचुरल थी, वेस्ट करना अच्छा नहीं माना जाता था। उसके लिए कोई फैंसी टर्म नहीं था, नोबडी सेड लाइक लेट्स प्रैक्टिस सस्टेनेबल कंजम्पशन, वी यूज्ड टू जस्ट बी टोल्ड लाइक पैसे लगते हैं पूरा यूज करो। एंड समहाउ दैट वन लाइन टॉट अस अ लॉट, चीजों की वैल्यू करना, उसका पूरा इस्तेमाल करना और थोड़ा सा लेजेंडरी इंडियन जुगाड़ भी, राइट। इसीलिए हम 90s वालों के सामने बॉटल को जल्दी एम्प्टी मत डिक्लेयर, कभी भी कोई नहीं कर सकता। हम उसको देखेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, शेक शेक शेक करेंगे एंड प्राउडली बोलेंगे देखा अभी एक बार और चलेगा। और हम थोड़ी देर और आपके साथ यहाँ पे रहेंगे, तो आप भी बने रहो हमारे साथ।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: श्रेया, जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ। वन कैंपल लेन, राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप। अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: नाइन्टीज के वो खूबसूरत दिन थे, शायद हमारे पास कम नहीं था, हमें कम में ज्यादा मिल जाता था। इसी बात के साथ आज का मस्ती 90s मिक्सटेप का रिवाइंड यहीं तक। वैसे आज की मेमोरीज को अगर एक साथ देखो ना, तो बड़ी एक फनी सी बात आप नोटिस करोगे। शैम्पू सैशे में लास्ट ड्रॉप तक उसका निकालना, छोटे सोप को नए सोप से चिपका देना, बॉटल सपोजिटली एम्प्टी हो जाए तो उसमें थोड़ा पानी डालकर एक और बार चलाना, मिठाई के डब्बे को एक दूसरी जिंदगी देना, एक कॉइन और पेंसिल से खुद को एंटरटेन कर लेना, मे बी हमारी जनरेशन का डिफॉल्ट सेटिंग ही कुछ ऐसा था। थोड़ा और निकल सकता है इसमें, और सिर्फ चीजों में नहीं, खुशी में भी। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए था, एक पेंसिल काफी थी, एक कॉइन काफी था, एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर के कोने में लगी फैमिली फोटोग्राफ काफी थी। कभी कभी मतलब, और बॉलीवुड भी अगर देख लो, जो करण अर्जुन हम जानते हैं वो कास्टिंग के ट्विस्ट के बाद बना, जो जीता वही सिकंदर, का शेखर भी जर्नी के बीच में बदल गया। मतलब स्क्रीन के पीछे भी परफेक्ट प्लान से ज्यादा जुगाड़, चेंजेस और हैप्पी एक्सीडेंट्स चल रहे थे। मे बी दैट्स व्हाई 90s स्टिल फील्स सो ह्यूमन। एवरीथिंग वॉज नॉट पॉलिश्ड, एवरीथिंग वॉज नॉट इंस्टेंट, एवरीथिंग डेफिनेटली वॉज नॉट परफेक्ट, बट समहाउ एवरीथिंग फेल्ट इनफ। और जब लाइफ में चॉइसेस हजार है, स्क्रीन्स हजार है, फोटोज हजार है, कभी कभी याद उन्हीं छोटी चीजों की आती है जिनके बारे में तब हमने सोच के भी नहीं सोचा था एक दिन इनकी इतनी याद आएगी। सो अगर आज किसी मेमोरी ने आपको सडनली किसी पुराने घर, किसी बाथरूम के शेल्फ, किसी ड्रेसिंग टेबल या अपने बचपन के किसी वर्जन तक पहुंचा दिया, तो आई थिंक आई हैव डन माई जॉब वेल। मैं 90s वाली आंत्रा, बस जाते जाते इतना कहूंगी कि 90s जरूर चले गए, हम भी बड़े हो गए, लेकिन हमारे अंदर वो बच्चा अभी भी कहीं है जो एम्प्टी बॉटल को देखकर कहता है कि रुको, इसमें अभी थोड़ा और बाकी है। एंड परहैप्स यादों के साथ ये भी तो एग्जैक्टली यही है, हर बार लगता है कि सब याद कर लिया और फिर कोई छोटी सी बात निकल आती है कि अरे हाँ यार, ये भी तो होता था। मिलते हैं अगले मस्ती 90s मिक्स टेप के नए एपिसोड में एक और ऐसी ही बिल्कुल खूबसूरत सी शानदार जर्नी हम रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो एंड वेलकम सिंगापुर। मैं हूं आपका दोस्त समर और स्वागत करता हूं आप सभी का इस शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। और ये आप सुन रहे हैं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो, दैट इज रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए। सिंगापुर, आज हम जिस फनकार की बात करने जा रहे हैं वो टैलेंट का एक पैकेज है जिसे आप जिस भी तरीके से यूज करना चाहें कर सकते हैं। भाई मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए एक फिल्म डायरेक्ट कर दें तो वो बेहद ही कमाल की फिल्म बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फिल्म का म्यूजिक भी वही दे दें तो जबरदस्त म्यूजिक वो दे देंगे आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म वो लिख भी दें, बड़ी खूबसूरत फिल्म लिख कर देंगे आपको। ये ऐसे फनकार हैं, ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम मिसाल के तौर पर लिया जाता है, जैसे कि उनके जैसा काम चाहिए क्या, या उनकी जैसी फिल्में चाहिए, या उनका जैसा म्यूजिक चाहिए क्या। तो ये जो उनके जैसे टाइप वाले कलाकारों में से हैं, उनका नाम है, जो बहुत ही विशाल प्रतिभा के धनी है, वो है विशाल भाई।

तो लेजेंड्स में आज हम इन्हीं के बारे में बातें करेंगे, इन्हीं की फिल्मों के गाने सुनेंगे। तो पहले गाने सुनिए और फिर हम बात करेंगे कि कैसे एक अंडर 19 लेवल तक क्रिकेट खेलने वाला लड़का म्यूजिक कंपोजर बन गया। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स। फिर से आज विशाल भारद्वाज की कहानी समर की जुबानी।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और मैं हूं यहां पर समर, लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं लेजेंड्स फिर से। आज हम विशाल भारद्वाज की बात कर रहे हैं। 4 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास चांदीपुर नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। माँ सत्या भारद्वाज हाउसवाइफ थी और पिताजी श्री राम भारद्वाज शुगर केन इंस्पेक्टर थे। हालांकि वो पोएट्री भी करते थे और बहुत सारी छोटी छोटी फिल्मों में उन्होंने गाने भी लिखे हैं। विशाल जब 5वीं क्लास में थे तब तक इनका परिवार नजीमाबाद में रहा। इसके बाद ये सब मेरठ आ गए। मेरठ में विशाल को क्रिकेट का शौक चढ़ गया, जैसे कि हर हिंदुस्तानी को होता है, मतलब इस उम्र में होता ही है, या तो क्रिकेट स्टार बन जाओ या फिल्म स्टार बन जाओ, यही तो सपना देखकर हम बड़े होते थे। हालांकि उन्होंने अंडर 19 तक क्रिकेट खेला, लेकिन एक मैच में बॉल सीधे इनके अंगूठे पर आ लगी और फिर वो बाद में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो साहब यहाँ इनका अंगूठा नहीं टूटा बल्कि दिल ही टूट गया। लेकिन विशाल के दिल के किसी कोने में एक म्यूजिशियन भी छुपा हुआ था। सिर्फ 17 साल की उम्र में इन्होंने एक धुन बनाई और उसे अपने पिताजी को सुनाया। पिताजी को धुन बड़ी अच्छी लगी। पिताजी ने वो म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना को सुना दी। पिताजी उषा खन्ना जी के लिए कई गाने लिख चुके थे, तो उषा खन्ना जी को वो जानते थे। उन्होंने वो धुन उषा जी को सुना दी कि भाई देखिए ये मेरे बेटे ने बनाई है, और साथ में ये भी कह दिया कि देखो हम तो ये कंपोजिंग का काम करते नहीं है, तुम्हें अगर कहीं लगे कि ये गाना ये धुन यूज हो सकती है तो तुम यूज कर लेना। और मैं आपको बताऊं कि 1985 में एक फिल्म आई थी यार कसम, उषा खन्ना का म्यूजिक था इसमें और उन्होंने इस धुन को वहां पर यूज भी किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि विशाल के करियर की शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। लेकिन जो असली शुरुआत थी मेरे दोस्त, उसमें अभी वक्त बचा था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन विशाल भारद्वाज के इन गानों का लुत्फ उठाने के बाद आप सुन रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।
7: हिट डाउन

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
8: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस बेहतरीन शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। और आज के जो हमारे कलाकार हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अपने शो पर, वह है बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक धुन तो बना दी थी, लेकिन ये हायर स्टडीज भी करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। और पढ़ते पढ़ते इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें प्यार हो गया है, और जिनसे प्यार हुआ वो एक कमाल की सिंगर हैं। अब उनके साथ रहने के लिए क्या किया जाए, तो इन्हें म्यूजिक में रुचि तो थी ही, तो इन्होंने म्यूजिक सीखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसी कॉलेज में जहां ये पढ़ते थे इनकी मुलाकात हो गई थी रेखा भारद्वाज से, इनका लव इंटरेस्ट। हालांकि वो इनसे सीनियर थी, लेकिन वो इनकी अच्छी दोस्त बन गई, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि ये बाद में इनकी लाइफ पार्टनर भी बनी। रेखा भारद्वाज बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। विशाल भारद्वाज की ज्यादातर, या यूं कहूं कि ऑलमोस्ट हर फिल्म में इनका एक गाना तो होता ही है। बहरहाल दिल्ली में इन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया। इनके कुछ दोस्त थे जो गजल गाते थे, तो उनके लिए ये हारमोनियम बजाया करते थे, लेकिन ये मुंबई आना चाहते थे, हर किसी का सपना भैया ड्रीम सिटी तो वही है। बड़ी मुश्किलों के बाद इन 1990 ये मुंबई आ पाए। 1991 में इन्होंने रेखा जी से शादी कर ली, और अगले बरस यानी 1992 में इनकी किस्मत का सितारा चमका, और इन्होंने वो किया जो आज तक सबको याद है। याद आपको भी है, लेकिन शायद आप भूल रहे हो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये सुनिए। हाँ, इस गाने को श्रीमान विशाल भारद्वाज ने ही कंपोज किया था, जो तब भी हिट हुआ था और आज भी हिट है। मतलब सिंगापुर ये म्यूजिक इतना हिट हुआ कि मुंबई में जितने भी म्यूजिक कंपोजर थे या राइटर्स थे, उनको लगा कि विशाल भारद्वाज नाम का कोई इंसान अपने यहाँ मुंबई में रहता है और काम कर रहा है, और काफी अच्छा काम कर रहा है। और इस गाने के कंपोजिशन में एक अच्छी बात ये हुई कि गुलजार साहब से उनकी मुलाकात हो गई, क्योंकि गुलजार साहब अपने गाने रिकॉर्ड कराते वक्त खुद भी मौजूद रहते हैं स्टूडियोज में। तो गुलजार साहब से ये मुलाकात बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली थी, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन गानों का लुत्फ लीजिए, विशाल भारद्वाज की कहानी सुनते रहिए समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव पर। यह लेजेंड्स फिर से, मिलता हूँ इन गानों के बाद फिर से।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। Masti Media Academy is now open for admissions. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मजी 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। मेरा नाम है समर और आज हम विशाल भारद्वाज की बात कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज कमाल के डायरेक्टर, कमाल के म्यूजिक कंपोजर और कमाल के स्क्रीन प्ले राइटर। सिंगापुर विशाल भारद्वाज की फिल्मों में एक अलग ही बात होती है, उनकी एक अलग स्टाइल है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इनकी ज्यादातर फिल्में ट्विस्टेड और इनकी फिल्मों के कैरेक्टर्स ग्रे शेड्स में होते हैं और म्यूजिक भी इन्हीं का होता है जो सीधा दिल में उतर जाता है। दरअसल ये मुंबई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे ताकि रेखा जी के साथ रह सकें और जब भी इनको फिल्में मिली तो इन्होंने कमाल का म्यूजिक दिया, जैसे कि जंगल बुक का वो टाइटल सॉन्ग था जो मैंने अभी आपको सुनाया, और इसके अलावा उसके बाद इन्होंने अभय जो कि एक चिल्ड्रन फिल्म थी अगेन उसमें म्यूजिक दिया, वो भी हिट रहा। लेकिन जो बड़ी कामयाबी इन्हें मिली वो इनको मिली 1996 में गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म माचिस से। इस फिल्म का एक एक गाना कल्ट क्लासिक बन गया, हर किसी की जुबान पर थे इस फिल्म के गाने, गुलजार साहब के बोल और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक। विशाल भारद्वाज साहब के लिए गुलजार साहब कहते भी हैं कि आरडी के बाद, पंचम के बाद अगर मेरे लफ्जों का किसी ने सही तरीके से इस्तेमाल किया है या इंसाफ किया उसके साथ तो वो विशाल है। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, और इतना बड़ा साथ अगर आपको मिल जाए मुंबई में तो फिर और किसी की जरूरत कहां है। और इस फिल्म से गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज का जो साथ बना वो आज तक बरकरार है। विशाल भारद्वाज की फिल्मों के गीत गुलजार साहब ही लिखते हैं और खुद विशाल उन गीतों को कंपोज करते हैं। बहरहाल माचिस के बाद इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया और फिल्मों में भी। 1999 में फिल्म आई गॉड मदर और इस फिल्म के लिए विशाल को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर मिला। सिंगापुर अभी आपके लिए गाने आएंगे और उसके बाद म्यूजिक कंपोजर से फिल्म डायरेक्टर कैसे बने विशाल ये बताएगा समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन गानों को एंजॉय कीजिए, वापस आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: लेजेंड्स फिर से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर विशाल भारद्वाज की विशाल कहानी। जी आज हम उन्हीं को जी रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी की बातें कर रहे हैं, उनकी फिल्मों के बारे में बातें कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया कि उनके म्यूजिक को अब लोग पसंद करने लगे थे और उनकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन एक बार गुलजार साहब ने इनसे कहा कि अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिकना है और तुम्हें तुम्हारी पसंद का म्यूजिक देना है तो तुम्हें अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये जो मीडियम है ना, ये डायरेक्टोरियल मीडियम है, तुम पहले राइटिंग सीखो और फिर खुद फिल्में बनाओ, तब तुम अपनी पसंद का म्यूजिक देना उन फिल्मों में। विशाल भारद्वाज गुलजार साहब को वैसे भी अपना मेंटर मानते हैं। वो कहते हैं कि वो गुलजार साहब के बचपन से फैन हैं और यहाँ तक कि उनके फादर उन्हें चिढ़ाते थे जानबूझकर। मतलब गुलजार साहब की कोई भी शायरी वो पढ़ते और बोलते कि क्या लिखा है यार गुलजार साहब ने, मजा ही नहीं आया, ऐसे कौन लिखता है। और साहब बस फिर क्या, विशाल अपने पापा जी से लड़ लिया करते थे इस बात पर। और सही भी है सिंगापुर, मतलब बचपन से जिनके फैन हैं और उन्हीं के साथ आपको काम करने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी इंसान के लिए। नहीं, बहरहाल इन्हीं मजेदार बातों के साथ अब वक्त हो चला है कुछ गाने सुनने का और उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप यहीं रहिएगा, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो आप सुन रहे हैं, रेडियो मजी 24/7 लाइव। इसका नाम, मेरा नाम है समर, लौटूंगा यहीं पर।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से, और आप अभी जिस आवाज को सुन रहे हैं उसका नाम है समर। रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर आपसे मुखातिब हूँ विशाल भारद्वाज की बातें लेकर। तो आज विशाल भारद्वाज, गुलजार साहब की बातों से इंस्पायर होकर विशाल ने अपनी पहली फिल्म बनाई, जो देखा जाए तो एक बाल फिल्म थी, चिल्ड्रन फिल्म थी। नाम था उसका मकड़ी।
1: उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी टाउ टाउ।
0: बहुत ही खूबसूरत थी ये फिल्म, एक हॉरर कॉमेडी थी ये, जिसमें श्वेता प्रसाद का डबल रोल है, एक छोटी सी बच्ची श्वेता प्रसाद, और फिल्म में शबाना आजमी है, एक घोस्ट बनी है वो। बड़ी मजेदार फिल्म है, बड़ी कमाल की फिल्म है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप भी देखिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी पक्का पक्का। एक बात जो विशाल भारद्वाज बोलते हैं कि हर डायरेक्टर की तरह मेरा भी सपना था कि मैं गॉडफादर टाइप की गैंगस्टर मूवी बनाऊं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, विशाल भारद्वाज को फिल्में बनाने का शौक क्विंटन टेरेंटिनोस की पल्प फिक्शन जो 1994 में आई थी उसको देखकर और क्रेजिस्टॉफ की टेलीविजन सीरीज देखलॉक को देखकर हुआ था। तो ये गैंगस्टर फिल्म बनाना चाह रहे थे और उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक दिन इनके हाथ लग गई विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ। उनको कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने सोचा कि यार ये सही टॉपिक है, और साहब इसी नॉवल पर इन्होंने बना डाली मकबूल, विशाल भारद्वाज की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म।
2: गिलोरी खाया करो गुलफाम, ज़बान काबू में रहती है।
0: ये फिल्म एक क्लासिक बन गई, हर कोई इस फिल्म को पसंद करता है, और इसी फिल्म ने विशाल भारद्वाज को उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में ला खड़ा किया जिनके स्टाइल की लोग बात करते हैं। इस फिल्म से दो कलाकारों की लाइफ बिल्कुल बदल गई, एक तो खुद विशाल भारद्वाज की और दूसरे इरफान खान साहब की। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन के बाद इस फिल्म के लिए किसी और की बात की जाती है तो वो है इरफान खान। कमाल का अभिनय उन्होंने किया जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। और पंकज कपूर है इस फिल्म में, वो अपने कैरेक्टर में घुसकर उसके साथ इंसाफ न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की कैरेक्टराइजेशन से बनी ये फिल्म मकबूल मकबूल हुई, और मकबूल हो गए डायरेक्टर के तौर पर हमारे आज की लेजेंड विशाल भारद्वाज भी। तो आइए कुछ गाने सुन लेते हैं इन्हीं की फिल्मों के, उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलूंगा ये बताने के लिए कि इनकी फिल्मोग्राफी की क्या खास बातें हैं। आप सुनते रहिएगा रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
3: I said name's Aditya. You can call me Adi.
4: I'm Panna.
3: Hi. Feel like a spin? Upar chalogi?
4: Kahan?
3: Mars. Mars pe chalenge.
4: His plane mein?
3: Of course. Don't underestimate this fly. It can fly really high. Chalo.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और समर आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है लेकर विशाल प्रतिभा के धनी विशाल भारद्वाज की कहानी। सिंगापुर अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं शेक्सपियर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड या बहुत इंप्रेस्ड है। इन्होंने अब तक 3 फिल्में तो ऐसी बनाई हैं जो शेक्सपियर के नॉवेल पर ही बेस्ड हैं, जैसे मकबूल जो मैकबेथ पर बनी और इसके बाद इन्होंने बनाई नॉवेल ओथेलो पर बेस्ड ओमकारा। अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, सैफ अली खान स्टारर, बहुत ही कमाल की फिल्म थी। कैसे नॉर्थ इंडिया में गैंगस्टर रहते हैं उन पर बेस्ड ये फिल्म थी और ऐसा लगता है आपको कि वाकई आप उनकी गैंग के आसपास रहकर इस फिल्म को देख रहे हैं। फिल्म का एक गाना बीड़ी जलाई ले आहा क्या पॉपुलर हुआ था। और इसके अलावा भी इस फिल्म का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। जहाँ एक तरफ कई डायरेक्टर्स रोमांटिक फिल्में बना रहे थे, कॉमेडी बना रहे थे, वहीं विशाल भारद्वाज एक अलग ही टेस्ट ऑडियंस को दे रहे थे, एक अलग ही तरह का सिनेमा पेश कर रहे थे और जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने 2014 में शेक्सपियर के नॉवेल हेमलेट पर तीसरी फिल्म बनाई हैदर।
6: गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले।
5: ये फिल्म कश्मीरी मुद्दों पर थी और इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने राइटर बाशरत पीर के साथ मिलकर लिखा जो खुद कश्मीरी मुद्दों के गवाह थे। यानी उनकी आंखों के सामने ही वो सब घटनाक्रम घटा जो उन्होंने फिल्म में पेश किया।
7: मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। किसलिए? पूछ पूछ
8: पूछ ना।
7: किसलिए?
8: अपने भाई के लिए।
9: आप इलेक्शन लड़ने का इंतजार कीजिए चाचा, मेरी लड़ाई तो शुरू हो गई।
5: ये फिल्म भी सुपरहिट रही और शाहिद कपूर जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था उनका काम काफी सराहा गया। इसमें इनके अलावा विशाल भारद्वाज की फेवरेट एक्टर इरफान खान ने भी जबरदस्त काम किया। गुलजार साहब के बोलते विशाल भारद्वाज का म्यूजिक था इस फिल्म में। और वैसे भी विशाल की फिल्मों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे गुलजार साहब का इनपुट तो हो गई होगा, वो गाने लिखेंगे, रेखा भारद्वाज जी जरूर एक गाना गाएंगी, इरफान खान होंगे चाहे छोटे से रोल के लिए हो और तब्बू भी होंगी। अच्छा, तब्बू के साथ भी उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं। बहरहाल भारद्वाज साहब की खूबसूरत फिल्मों में से कुछ गाने चुनकर आप तक पहुंचा रहा हूं मैं रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए। सुनिए, मस्त हो जाइए और वापस आइए क्योंकि अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आइए मेहरबान बैठिए जाने जान।
2: अरे आप आ गए, दरअसल मुझे पता था कि आप आ गए हैं इसलिए मैं ये गाना गुनगुना रहा था। चलिए आ गए हैं तो हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम। आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। आज हम विशाल भारद्वाज को जी रहे हैं, उनकी फिल्मों की बातें कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक पहलू जो शायद आप नहीं जानते हो आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी इनकी एक फिल्म ओमकारा का हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। इस फिल्म में गाना है बीड़ी जलेली। ये गाना कैसे बना इसके पीछे बड़ा मजेदार किस्सा है। विशाल भारद्वाज चाहते थे कि इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट होने चाहिए क्योंकि उन्हें माचिस और सत्या के बाद कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही थी म्यूजिक कंपोजर के तौर पर, तो ये एक बड़ा हिट म्यूजिक देना चाहते थे। तो इन्होंने गुलजार साहब को बुलाया और कहा कि देखिए आपको इस फिल्म के गाने लिखने। और इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे इस फिल्म के लिए ना एक मस्त आइटम नंबर चाहिए, जैसे बरेली के बाजार में झुमका गिरारे टाइप का या फिर पान खाए सैया हमार टाइप का। तो गुलजार साहब ने कहा ठीक है यार लिखते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में एक गाना है, सिगरेट का छोड़ो ख्याल बाबू सिगरेट पियोगे तो होंठ जलेंगे। तो गुलजार साहब ने कहा कि मैं इससे भी बढ़िया लिख दूंगा और अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगे तो हम फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो दो दिन बाद गुलजार साहब का कॉल आया, बोले अरे विशाल बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग। और साहब उधर विशाल भारद्वाज ये सुनकर उछल पड़े कि सर यही चाहिए, और ऐसे ये बेहद कमाल का गाना बना। सिंगापुर एक और गाने का किस्सा है मेरे पास, जब आप लौटेंगे इन गानों के बाद तो मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुनिए, मजा आ रहा है तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर बताइए तो सही। विशाल भारद्वाज की कहानी आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: आ गया भाई, आइए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। एक गाना है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैंने भी अभी कुछ देर पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो विशाल भारद्वाज ने शेयर किया था। फिल्म वही थी ओमकारा, और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि इस फिल्म का म्यूजिक विशाल भारद्वाज धमाकेदार बनाने वाले थे, तो वो एक गाना घर पर ही कंपोज कर रहे थे। और जनरली विशाल जब भी कोई गाना कंपोज करते हैं तो पहले वो रेखा से गवाते हैं, रेखा जी उनकी पत्नी से, चाहे वो गाना मेल सिंगर का हो या फीमेल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि उनको लग जाए कि अच्छा गाना बना भी है या नहीं। तो साहब ये गाना है ज़बाँ पे लागा लागा रे नमक इश्क का। अब इसमें नमक इश्क का के बाद हाई नहीं था ओरिजिनली, लेकिन जब रेखा जी ने गाया तो उन्होंने खुद की तरफ से हाई लगा दिया। ये सुनिए आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।

मजा आ गया ना सुनके। कुछ ऐसा ही मजा विशाल जी को भी आया था सुनने के बाद, और उनके मुंह से निकला, वाह क्या गाना गाया है। सिंगापुर ऐसे ही होता है, कला चीज ही ऐसी है, इसमें सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है। कई बार राइटर का लिखा हुआ डायलॉग शूटिंग के वक्त चेंज हो जाता है, मतलब एक्टर सेम टू सेम डायलॉग न बोलकर कुछ और बोल देते हैं और फिर वो हिट भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस गाने के साथ हुआ। ओरिजिनली विशाल ने हाई नोट्स पर इसे नहीं सोचा था एंड में, लेकिन क्योंकि रेखा जी ने गा दिया तो वो गाना ऐसे ही बन पड़ा और उन्होंने ही फिल्म में भी गाया है। कमाल गाया। चलिए विशाल भारद्वाज के बारे में कुछ और बातें हैं मेरे पास जिन्हें मैं करूंगा इन गानों के बाद। आप तो ऐसे ही धीरज रखकर बैठे रहिए रेडियो मंजरी 24/7 लाइव के पास और सुनते रहिए। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: कहा था ना, यूं गया और यूं आया। लीजिए हाजिर है रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आपका समर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। वैसे आज की हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन हमेशा हमारा साथ बना रह सकता है, रहता है फेसबुक पर। तो वहां आकर आप हमें बताइए इस शो के बारे में आपको कैसा लगता है, आप क्या और सुनना चाहते हैं, कौन से गाने जो आप सुनना चाहते थे हमने नहीं सुनाए, वो सब बताइए ताकि हम अगली बार उन गलतियों को न करें। आज हमने फिल्म डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज की बातें की, वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्मों की बात की। ज्यादातर वो उन टॉपिक्स पर फिल्में बनाते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इसके अलावा वो शेक्सपियर से काफी इंस्पायर्ड थे। इनके अलावा वो ग्रेट राइटर रस्किन बॉन्ड से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। इनकी दो फिल्में सात खून माफ और ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की एक सीरीज पर आधारित हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और फिल्म बनाई थी जो इसी साल रिलीज हुई है, पटाखा। ये फिल्म भी राजस्थानी राइटर चरण सिंह पथिक की शॉर्ट स्टोरी दो बहनें पर बेस्ड है, जो कमाल की हिट साबित हुई। डिफरेंट म्यूजिक डिफरेंट डायरेक्शन के लिए मशहूर विशाल भारद्वाज को कई अवार्ड भी मिले हैं। ब्लू अम्ब्रेला को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। इसके अलावा इनकी फिल्म कमीने के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है। फिल्म हैदर के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड इन्हें मिला, और फिल्म तलवार के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का अवार्ड इन्हें मिला। भाई देखिए, मुझे तो विशाल भारद्वाज की बनाई हुई फिल्में बहुत ही अच्छी लगती हैं। एक अलग तरह का सिनेमा देखने को मिलता है, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इनकी फिल्मों में हर एक कैरेक्टर का एक स्पेशल रोल होता है, क्योंकि वो हर रोल हमारे आसपास के लोगों से मिलता जुलता होता है, हम बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं उनसे। गुलजार साहब इनके बहुत बड़े फैन हो गए, मतलब ये गुलजार साहब के फैन थे इसलिए फिल्मों में आए। लेकिन गुलजार साहब इनकी तारीफ करते हुए कहते हैं,
2: He is so close to me and I am so fond of him. एक बड़ी क्वालिटी क्रिएटिव आदमी की होती है, हर क्रिएटिव शख्स के अंदर, मतलब अपने ही काम को खुद देख के उस पे इम्प्रोवाइज करना कहना कहीं खराब है, ये बड़ी रेयर क्वालिटी है किसी क्रिएटिव आदमी। उसमें इतना दम है और इतनी हिम्मत है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है कि हाँ नहीं, मैं इससे बेहतर करूंगा।
1: तो सिंगापुर ये था आज का लेजेंड्स फिर से। आप हमें बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। अगली बार किसी एक और नए फनकार के साथ मिलेंगे, उनकी जिंदगी को जिएंगे, उनके गानों को उनके कामों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि रखिएगा अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मैं मिलूंगा आपसे यहीं पर, यह रेडियो मसी 24/7 लाइव। अभी चलता हूं, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave Spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
8: भाई की डन है मम्मा।
9: ड्यूटी
10: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
9: मैं उठता था।
7: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti, 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
0: Singapore, get ready to be spellbound with सुहानी शाह, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना.
8: भाई की डन है मम्मा.
9: ड्यूटी
10: लास्ट टाइम मैं उठा था ना.
9: मैं उठता था.
7: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं. इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ. वन कैंपल लेन राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: भाई की डन है मम्मा।
5: ड्यूटी
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता।
3: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Jump.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: Salman Khan wanted answers.
2: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yeah. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
8: भाई की डन है मम्मा।
9: ड्यूटी? लास्ट टाइम मैं उठा था ना।
8: मैं उठता।
7: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: 21 तारीख को हम कह रहे हैं कि साड़ी गली आया करो, आया करो, आया करो, आते ही रहा करो और जाया मत करो.
2: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
1: क्या हुआ
3: ये तो मतलब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई. वैसे तो आपने आना ही है, फ्राइडे वाली मॉर्निंग है, आप कहाँ ही जाओगे.
1: वेरी वेरी ट्रू. जी हाँ बिल्कुल, फ्राइडे को हम बुलाएं ना बुलाएं आप बिल्कुल आ सकते हैं. हमारे बहुत सारे दोस्त इस समय बोलने लग चुके हैं कि भाई फ्राइडे मॉर्निंग के शो के लिए मुझे रख ले, मेरी आवाज आज बहुत ऐसी वाली हो रही है, वैसी वाली हो रही है. तो भाई हमारे पास एप्लीकेशंस भी आ रही हैं फ्राइडे मॉर्निंग के शो के लिए. तो अगर आप में से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बैठ के गंदी बातें करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम.
3: Now I'm curious, what is this Friday morning early आवाज? Like it's not even the husky आवाज we are talking in. We are like, मतलब ये तो late night वाला show होता तो बात कुछ अलग थी.
1: Honestly अंतरा, लोगों को लगता है कि there is room for improvement. जो बातें हम करते हैं यहाँ पर सुबह सुबह, I think उसके लिए अगर हमारी husky voice होगी तो बहुत ही मजा आएगा. Good morning, this is Masti Madness. ऐसे constipated आवाज लगती है मेरे को ये सुबह के time पे, है ना?
3: सुबह के टाइम पे ऐसे लगती है. आप सोचो बाकियों का हालत है पूरे के पूरे फ्राइडे वाले दिन.
1: हाँ.
3: कहते अब जाए कहाँ, कैसे काम कैसे होगा अब.
1: भाई साहब मैं तो सही बात,
3: ये जनहित में जारी है. we think about you a lot, that's why we don't do all of these
1: absolutely
3: things.
1: लेकिन मैंने बहुत बार ये कहा है सिंगापुर की सरकार को कि हमें दे दो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ आपकी पॉपुलेशन की तरफ ध्यान देने का. सो वो हम बिल्कुल कर देंगे फ्राइडे के अपने शोज के साथ में. इसी के साथ में शुरू होते हैं यहाँ पर गंदी गंदी बातों का सिलसिला पूरे के पूरे 10 बजे तक रहेगा. क्यों अंतरा रहेगा?
3: रहेगा रहेगा बिल्कुल रहेगा जी, एकदम ऐश करेंगे और क्या.
1: Awesome. तो आवन जावन, आपका सिर्फ आवन होना चाहिए, 10 बजे हम सब जावन करेंगे. ओके, कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7, हैप्पी फ्राइडे.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी कौन है मम्मा?
2: ड्यूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: शाबा जी हाँ, यही गाना चल रहा था इस टाइम। अर्ड शिरन मतलब हम क्या कहते हैं पंजाबियों में,
1: अर्ड शिरन। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
0: दिस इज मस्ती मैडनेस। रेडियो मस्ती 24/7 पर आपका स्वागत करते हुए यहाँ पर अंतरा और रेणुका।
2: इन्होंने ऐसा एड शरीन लगाया हुआ है, मैं लिटरली एड शरीन को हर जगह पर यू नो इसका गाना। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर थी, परफेक्ट चल रहा था किसी तो कैफे में उसका एड शरीन का गाना। सो आई लिटरली से अरे ये तो सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय एड शरीन, एंड दे वर लाइक दे वर गिविंग मी दोस लुक, एड शरीन लाइक हाउ डेसिफाइड यू हैव डन इट। ऑल ऑफ अ सडन का it comes with my job, it's okay. all credit goes to Renuka for this. अब मैं बुलाती नहीं हूँ, एड शरीन ही कर दिया मैंने।
0: ठीक है चलो कोई नहीं, एड शरीन भी खुश होगा कि भाई उसके बारे में कितने प्यार से हमने इतनी देर बात करी है। बट यू नो वट द न्यूज राइट नाउ इज कि अगला गाना जो हमारा है वो बात कर रहा है साड़ी की फॉल का, और हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं हेयर फॉल की, ठीक है। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड की एक जो ये लेडीज है रेणु धरियाल, उन्होंने पता है क्या किया है, She's got her space in the Guinness World Records, okay? And her hair is 8 feet 10 inches. जी हाँ, इनकी तस्वीर आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर इस टाइम पर। 8 feet 10 inch, सिर्फ और सिर्फ बाल। साड़ी के बाल सा कभी मैच किया, बताओ।
2: It is not meant for neither me nor the Renu sitting right
0: not at all. Not at all. मैं तो सोचती हूँ, you know what? उससे पूछा कि भैया क्या है ये? क्या है ये तुम्हारा पैशन? भाई, it is the longest hair on a living person, okay? And Renu जो है, 2015 से अपने बाल उगा रही हैं, she's never cut it, and she says कि इनका जो decision है ना, it was भाई वो influence हो गया था Indian tradition से, जहाँ पर लंबे बाल historically are associated with beauty and cultural identity. तो उसने कहा भैया मेरे को लगा कि वाह भाई मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2015 से बाल नहीं काटे। और अब जो यूक्रेन का पिछला वाला इंसान है जिसके 8 फुट 5.3 इंचेस बाल हैं, इसने 10 इंच करके यस भारत को एक ऐसी जगह पहुंचा लिया है जहां बाल बाल बाकी सारे देश बचे हैं और हमारे पास सिर्फ बाल ही बचे हैं। वाह
2: सो दैट्स व्हाई दे से इंचेस मैटर,
0: सर्टेनली लेंथ मैटर्स।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: एक बाल से दूसरे बाल तक जाते हुए रेणुका एंड अंतरा ऑन मस्ती मैटर्स. मस्ती मैटर्स जहां न्यूज भी होती है.
2: आज तो बाल दिवस ही मना रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं बालों की एक के बाद एक. गुड मॉर्निंग, इट इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7. अंतरा, क्या खबर है?
1: आपने बात की लंबे बालों की, मैं बात करूंगी छोटे छोटे बालों की, एकदम नन्हे मुन्ने ऐसे. एंड नॉट वेयर यू आर थिंकिंग बिकॉज इट्स फ्राइडे शो. ना, मैं वो बालों पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, मैं तो आंखों की आईलैशेस की बात कर रही हूँ. वैरायटी ऑफ ट्रेंड्स विच कीप ऑन कमिंग इन द मार्केट राइट नाउ. एक ट्रेंड विच इज पुशिंग सम मेन टू कट और ट्रिम अपने आई लैशेस.
2: ओह माय गॉड, मेरे से पूछो यार, मैं एक्सटेंशन करा
1: मोर. हाँ, टू अपियर मोर व्हाट, मैस्कुलिन. अब तुमने इसमें भी जेंडर बायस कर दिया, मतलब अब पलके भी बेचारे. एंड आई लव मेन विद यू नो ब्यूटीफुल लैशेस, डू आई गेट जेलस कभी की कुछ कुछ बंदों की कितनी खूबसूरत आंखें होती है, बट दोस बिग बिग आईलैशेस उनको देख के लगता है भाई मेरे अगर होते तो मतलब मजे ही आ जाते. एंड दे आर कटिंग इट फॉर जस्ट अ ट्रेंड क्योंकि उनको मैस्कुलिन लगना है. गाइस, नो गाइस, नो गाइस, व्हाट इज
2: या द शेप ऑफ द आई लुक्स सो ब्यूटीफुल विद लॉन्ग आईलैशेस. एंड मतलब आप सोचो, हम कैस्टर ऑयल लगा लगा के एक्सटेंशन करा करा के परेशान हो गए हैं कि भैया किस तरीके से उग जाए, और आप काट रहे हो. But this is also reminding me of my friend whose husband is bald. Okay, not मतलब he's balding okay. very quickly, and she has long hair. So उसके जब बाल बाथरूम में उसको दिख जाते हैं कोम करने के बाद में, he keeps picking them up and saying बाल ही बाल है, बाल ही बाल है. तो she says हाँ, just because you're jealous. तुम्हारे हैं ही नहीं तो गिरेंगे क्या?
3: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: इन बेशरम रंगों से बढ़ते हैं आगे। रेडियो मसी 24/7 पर स्वागत है आपका एक बार और। दिस इज रेणुका एंड ऑफ कोर्स देयर इज अंतारा विद मी ऑन मस्ती मैडनेस।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती।
2: हाँ जी हाँ जी, वही आपका खास खास कार्यक्रम जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अतरंगी बातें होती है, बिकॉज अपेरेंटली हम भी अतरंगी ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, मुंह में अगर कुछ डालो तो सोच समझ के डालो, है ना अंतरा? आपको मैं आज फ्राइडे के शो पर भी यही समझाना चाहूंगी, क्योंकि एक छोटी सी लड़की ने, आप बिल्कुल गलत मत सोचिए, वो होता है ना स्कूल में बैठे बैठे मुंह में पेन डाल देते हैं हम लोग, और पेन डालते हैं तो उसका कभी कभी जो ढक्कन होता है जो पीछे लगा के हम मुंह में डालते हैं वो कभी कभी अंदर भी जा सकता है। सो Well, what happened was that ये जो पेन का ढक्कन है, it remained lodged उस लड़की के अंदर bronchus, मतलब कि उसके lungs के वहाँ पर 7 साल तक। और जो multiple doctors हैं उन्होंने हमेशा उसको देखा कि भाई इसको क्यों सांस की problem हो रही है, everything they kept saying tuberculosis, TB है या asthma है। Then finally जब weight loss होने लगा, persistent cough होने लगी, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है infectious disease हो रही हो, कुछ antibiotics भी चेप दिए एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑल इट टुक वाज एन एक्सरे टू फिगर आउट दैट वहां पर लंग्स के पास में एक ढक्कन जो पिछले 7 सालों से वहां पर बैठा हुआ था, ऑब्वियसली दैट वाज द वन कॉजिंग द इश्यू। अब तुम ही बताओ बहन, क्या है ये?
2: मतलब कितनी सारी चीजें हम लोग करते थे बट हमने कभी उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया हुआ है। दिस कैप को चबाने वाला थिंग वो सच अ नॉर्मल थिंग इन स्कूल, क्योंकि हमारे रेनॉल्ड्स के पेन के जो ब्लू कलर के नीले रंग के कैप होते थे ना, उसका हेड हमेशा चबाया हुआ ऐसा, क्योंकि यू नो हमेशा उसको वैसा ही मिलता था।
0: तो वो चबाते चबाते इसने खा लिया और शी डिडंट बॉदर टू टेल एनीबॉडी और व्हाटएवर हैपेंड, एंड देन इट्स लाइक अच्छा चलो खा लिया तो खा लिया, बट प्लीज डार्लिंग बताओ तो सही।
3: हे डार्लिंग्स, You mad you,
0: but what to do?
2: You mad you.
0: Yeah, you mad you.
2: Yeah.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: भाई की डन है मम्मा।
5: ड्यूटी
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता था।
3: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: Baba Jiggy Booty. Baba Ji is having some other booty altogether. Let's talk about it.
3: Oh, Baba Ji is having a life, huh?
4: Crazy duniya, crazy khabre. Aur hamara ye crazy.
3: Ek Simran ke Baba Ji the, aur ek ye wale Baba Ji hain.
4: Radio Musti 24/7.
3: Hum hain Radio Musti 24/7. Ji hum Musti Madness. Antra, kaun Baba Ji batao?
2: बाबा जी जो है, बाबा जी काफी सारा ज्ञान बांट रहे हैं। बाबा जी वैसे भी जो है जाने जाते हैं काफी ज्ञान बांटने के लिए, काफी फनी ज्ञान बांटने के लिए भी जाने जाते हैं। तो आजकल बाबा जी ने एक मोर्चा निकाला है हिंदुस्तान में कि ए ए बी सी डी वाला ए ए फॉर एप्पल नहीं होना चाहिए, इट शुड स्टैंड फॉर ए फॉर अमरूद।
3: व्हाई? ये क्यों?
2: व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू बाबा जी एप्पल इज अ फॉरेन फ्रूट, तो इसीलिए ए फॉर एप्पल नहीं होना चाहिए, ए फॉर अमरूद हो जाना चाहिए, उसको कन्वर्ट कर। मैं सिर्फ लाइक इन माय हम्बल ओपिनियन बाबा जी से, अगर तो बाबा जी ने थोड़ा सा चैट जीपीटी कर लिया होता तो उनको पता चल जाता कि अमरूद भी उस हिसाब से फॉरेन ही है।
3: वो तो बड़ा ही डीप है, लेकिन अगर बाबा जी ने ये बोला है तो जी फॉर गुआवा नहीं होगा तो जी फॉर क्या होगा, ये बताइए। मैं बोलूं कुछ क्या?
5: निकला गड्डी लेके
2: जी फॉर वही होगा जो सबके दिमाग में अभी आ रहा है।
3: तभी तो मैंने कहा कंप्लीट कंप्लीट मैं करूं या जी फॉर गड्डी जो ये गाना है।
2: जी बिल्कुल
3: जी। तो अब ऐसा है,
2: पीपल आर इंटेलिजेंट काफी, सबको समझ में आ ही गया होगा।
3: हाँ, जो समझ गया वो समझदार है। गुड मॉर्निंग एंड हम आपको मिलेंगे अगले घंटे। लेकिन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दाग वाला एप्पल, ई फॉर ए केड़ा एप्पल, दैट्स माय फेवरेट।

0: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: ऑलराइट, इसी के साथ मैं आपका स्वागत यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती मैडनेस. सुबह 7 बजे से हम और आप हैं साथ साथ एंड इट इज टाइम फॉर अस नाउ टू गेट इनटू द सेकंड आवर.
1: This is Masti Madness on Radio Masti.
2: चलते चलते हम लोग यहाँ पर भी बिल्कुल एंट्री मार चुके हैं, बट खबर कौन सी एंट्री मार रही है वो तो रेनू का बताएंगी.
0: भाई मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आते जाते खूबसूरत बड़े सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक इंसान ऐसा होता है जो वहीं का वहीं रहता है ना. बात कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ मैं लैरी द कैट की. और अगर आप सोच रहे हैं ये लैरी द कैट कौन है, तो मैं बताना चाहूंगी कि भाई यूनाइटेड किंगडम, अगर आप चले लंदन, तो लंदन में है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट. और वहां पर पिछले कुछ सालों में आप जानते हैं डेविड कैमरून, थ्रीसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कायर स्टार्मर, इतने सारे लोग आके चले गए, लेकिन लैरी द कैट वही के वही है. 7 प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए. तो भाई प्राइम मिनिस्टर तो कोई टिक नहीं रहा, तो लग रहा है कि लैरी द कैट को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, एटलीस्ट 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काम तो चलता रहेगा.
3: खुली सड़क में पकड़ी तड़क
2: भाई, अलग ही टशन होगा उसका. द ओनली थिंग परमानेंट इज लैरी द कैट.
0: यस,
2: बाकी सब आवन जावन करते रहते वहां पर.
0: लैरी द कैट जो है वही का वही, ही इज द वन ग्रीटिंग ऑल द गेस्ट, स्लीपिंग एकदम डोर पे, कीपिंग वॉच आउटसाइड द फेमस ब्लैक डोर.
2: कितना काम.
0: हाँ, और वो भी लैरी द कैट भी कंफ्यूज होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है आज फिर बदल गया, यहाँ पर फिर बदल गया. यार ये क्या है.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: भाई प्रैंक खेलना और उसको अप्लाई करना ये अलग लेवल की मस्तियां होती है, अलग लेवल की
2: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज़ भी होती है गैस।
3: और अगर आप सोच रहे हैं किस तरह की खबरें हैं यहाँ पर, कोई भी करंट अफेयर्स की बात नहीं हो रही, कोई भी नेशनल डे की बात नहीं हो रही है भाई, स्वतंत्रता दिवस की बात नहीं हो रही है, अगस्त के महीने की बात नहीं हो रही है, आने वाले दिनों की बात नहीं हो रही है, मतलब क्या कर रहे हैं ये, बॉलीवुड की भी बात नहीं हो रही है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। दिस इज मस्ती मैडनेस।
1: भाई प्रैंक के साथ साथ अगर मतलब वो लाइंस इरेज हो जाए जिसको ब्लरी लाइंस कहते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही होगा। तो हुआ कुछ ऐसा, जेम्स मैकग्रॉ और इनकी वाइफ केली, ठीक है, ये वायरल किस रीजन की वजह से हुआ है, तो पत्नी ने पति को दिया हेयर कट, ठीक है, जेम्स को, बट जेम्स को मतलब बहुत ही गंदा हेयर कट दिया और उसको पसंद नहीं आया, तो उसने ऐसे मजे में मतलब अरे ये तो टेक इट लाइट, इतना क्या सीरियस होना, वैसे करके कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट जेम्स डिड, कहते ओके फिर मैं भी कुछ ऐसा कर ही सकता हूँ ना, कि मतलब उसके बाद आई विल ऑल्सो जस्ट लाफ इट ऑफ।
3: बिल्कुल।
1: व्हाट ही डिड वॉज उसने टैटू कराया। टैटू क्या कराया? अपने थाई पे, ठीक है, अपनी बीवी के साथ ली हुई एक फोटोग्राफ, जहां पे जेम्स तो ऐसे ही नॉर्मल पोज कर रहा है अपनी बीवी को दिखाते हुए, जो कि एयरप्लेन की सीट पे मुंह खोल के तब खर्राटे ले रही होगी, उसने फोटो खींची होगी उस टाइम पे, मुंह खुला हुआ जेम्स की बगल में शक्ल, एंड व्हाट ही एडेड वाज आल्सो द डबल चिन विथ हाइलाइट।
3: दैट इज अ क्राइम
1: भाई साहब, वो जो मतलब अब थाए जो है उनका वाज एवरीवेयर एंड इट वेंट वायरल, बिकॉज़ वो तो अपनी शक्ल दिखा रहा है, लेकिन बीवी की जो शक्ल आई है भाई आर्टिस्ट को तो क्या ही आर्टिस्ट, उसने हूबहू जो शक्ल उतारी है,
3: पर गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखो बाल तो फिर से उग जाएंगे, आगे जाके ठीक हो जाएंगे, ये टैटू तो बहुत गंदा जवाब, गंदा, बहुत घटिया, बहुत गंदा, नो नो।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: पानी हो रही है, ये पानी पानी। इसी बात से याद आया, ये बादशाह, बादशाह का डिवोर्स हो गया ना कि नहीं हो गया? Oh my God, why are we talking Bollywood?
1: This is Masti Madness on Radio.
2: डिवोर्स हो गया, शादी भी हो गई वापस से, just
0: keeping
2: everybody up.
0: Okay, not right now. No.
2: Yeah.
0: Radio Masti 24/7. Well, क्या है कि दुनिया में सिंगल लोगों की अब जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है, चाहे डेटिंग एप्स हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी लोगों को कोई नहीं मिल रहा है, right? There's lot of single women and single men out there. So, फिनलैंड में क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी, तो वहां की सरकार ने एक नई चीज शुरू करी. बोला, देखो जी, एक ऐसी जगह है जहां पर सब जाते हैं, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, ठीक है? और वो जगह है शॉपिंग सेंटर, जहां पर ग्रोसरीज शॉपिंग होती है. खाने के लिए तो जाएगा ना, चाहे एक चीज लेने चाहे दस. तो उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस किए ब्राइट पिंक शॉपिंग बास्केट्स कॉल्ड सिकुकोरी. अब सिकुकोरी क्या होता है कि अगर आप वहां जाके ब्राइट पिंक शॉपिंग बास्केट उठाते हैं टू शॉप, दैट मींस यू आर सिंगल एंड ओपन टू मिंगल. एंड वहां पर अगर कोई भी आसपास है जिसको इंटरेस्ट है किसी से बात करने में, तो वो आपको अप्रोच कर सकता है. दैट्स लाइक अ वे टू से कि ओके, आई एम ओपन, यू कैन कम एंड टॉक टू मी. सो स्टैंडर्ड ब्लैक बास्केट्स पड़ी होती हैं, ग्रे वाली पड़ी होती हैं और पिंक वाली पड़ी होती हैं. तो बिल्कुल वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो आकर करें. और फिर उसके बाद ऑफकोर्स वहां से हो सकता है कि रिश्तों में प्यार आ जाए और सब्जियां आपकी कॉमन हो और आप उसके बाद आगे बढ़ जाएं. Bambule.
2: What a cool idea. I really like it.
0: Without making anybody feel offended or whatever, right? It's basically, I'm looking for company and you're looking for company and this is the best thing, right? Love it.
2: I know. Times have really changed. From the times we hum log jab Archie's jaate the aur we could not declare that we are going to just take a have a glimpse of our crush over there.
0: Bilkul.
2: And dur se sab dekh paarte rahe usko ki ek jhalak dikh jaye to maza hi aa jaye. Here it is a little bit open. I love it.
0: Love it. In fact, mujhe lagta hai ki jo Singapore mein problem hai single logon ki and all that and they can't find somebody, this is a great way, right? You're basically indicating that you're open and और अगर यू आर नॉट ओपन एंड स्टिल यू आर इंडिकेटिंग, तो और भी मजे. चल पिंक पिंक वाली उठाएंगे अंतरा, ठीक है?
1: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: कैसे किया ये?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
1: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.

0: कॉमेडी के अलग अलग टाइप के आइडियाज जो है मार्केट में आ रहे हैं, विच इज क्वाइट नाइस. जैसे अभी पिछला आइडिया था, ये भी एक आइडिया है.
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती
2: में. इफ देयर इज वन थिंग दैट कैन एक्साइट मी एट एनी पॉइंट ऑफ द डे और नाइट, इट इज क्रिएटिविटी. कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी अलग, मतलब दुनिया का जो भी बोरिंग मोनोटनी है उसको तोड़ के कुछ नया करना. आंसर गेटिंग मी एक्साइटेड, जल्दी बता बता.
0: यस, कुछ ऐसा है कि गुड़गांव की ये बंदी है, शी हैज गॉन वायरल फॉर दिस रीजन, बट शी हैज आल्सो वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क एवरीबॉडी. सो वेल, अब ये बंदी क्या करती है, शी हैज गॉन वायरल क्योंकि जब जब ये घर में रेस्टोरेंट स्टाइल मील, यानी कि कुछ बहुत ही खास अपना एफर्ट डाल के थोड़ा प्लेटिंग व्लेटिंग करके घर पे कुछ बनाती है, शी चार्जेस 1,000 रुपीज. उसके हस्बैंड को उसके लिए 1,000 रुपीज पे करना पड़ता है. एंड you know she also says that it's not about like I want to earn from him or something, but it's about mera time, effort, ये सारा जो क्रिएटिविटी मैं डाल रही हूँ, प्लेटिंग कर रही हूँ, तेरे को दे रही हूँ रेस्टोरेंट टाइप का मील, जो बस ये है 20,000 कमा लेती है वो एक बार में कर करके ऐसे रेस्टोरेंट टाइप मील उसको सर्व करते हुए. एंड दो इंटरनेट इज डिवाइडेड, बट शी इज ऑल्सो आस्किंग, भाई अनपेड लेबर इतने सालों से तुम लोग को मिलता आया है, तो मतलब ऐसे ही तो ना मैं चार्ज कर लेती हूँ, उसमें क्या है. ऑल्सो द अदर साइड ऑफ इट, नोबडी आस्क्ड कि इट हैपन्स द अदर वे अराउंड एज वेल, कहते आई ऑल्सो पे 1,000 इफ ही कुक्स फूड.
2: आई लाइक इट, I like that. It's a pretty...
0: It is not bad if you actually practically think about it. It's not just she's saying ki main hamesha 1,000 rupees karke kamati hu. Even if he cooks, I pay him.
2: Wonderful.
3: Equality.
2: बराबर, हमेशा, वेरी गुड. कितनी खुशी हो रही है मुझे आज, आंखें भराई मेरी,
0: है ना. बहुत ही कमाल का कूल आइडिया लगा मुझे. मतलब दोनों तरफ एकदम सही. एंड एक्चुअली मैं नोबडी आस्क्ड हर कि भाई यू नो हर कोई उसी को बोल रहा है कि तू क्यों चार्ज कर रही है 1,000 रुपए घर में खाना बनाने के लिए. बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि ऐसा करते करते जो खाना हम लोग रेस्टोरेंट में स्पेंड करते थे जितना अमाउंट, वी आर काइंड ऑफ सेविंग इट ड्यू टू Good. This thing.
2: Creative.

0: एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7। अंतरा मुझे आगे फाड़ फाड़ के देख रही है, ऐसे मत देखो ना, प्लीज मत देखो, प्यार हो जाएगा।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। This is मस्ती।
2: आपने सुना ना, the way she started radio मस्ती। Okay, yes, बताओ।
0: अभी बोलना भी जरूरी है, लेकिन जब हर बार बोलते हैं हम तो लगता है यार ठीक है, मतलब अब हर बार नए तरीके से बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी लगेगा। तो भाई ऐसा है कि
2: बहुत बढ़िया, अरमान जग गए सबके, बताओ।
0: We are Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network Singapore, and this is RJ Antara and I am Renuka. Well, लेके चलेंगे आपको। अब तुम थोड़े शांत हो जाओ तो हम खबर बता देते हैं। खबर ये है कि उसमें मेरे को तुम्हें लेके जाना है साउथ कोरिया सोल। चलोगी तुम कि नहीं? Okay. चलोगी
2: बिल्कुल, अभी के अभी चलो,
0: है ना?
2: आई तो लव कोरिया,
0: ठीक है। सो भाई एक वहां पर एक ओनर है ऑफ अ 2 मिचलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट, एंड उसको एक साल की हो गई है जेल, और साथ में उसको फाइन मिला है 20 मिलियन वॉन का फॉर सर्विंग रफली 49,000 इम्पोर्टेड ब्लैक एंट्स एज अ डिजर्ट गार्निश फॉर 4 ईयर्स। तो अगर तू पहले कोरिया गई है और तू इस रेस्टोरेंट में गई है, तेरे पेट में 49,000 इम्पोर्टेड ब्लैक एंट्स में से कोई तो होगी अगर तूने वही वाला डिजर्ट खाया जिसका ये गार्निश था। ओके, सो अब हुआ ये कि साउथ कोरिया जो है ना लीगली अलाउ करता है 10 इंसेक्ट स्पीशीज फॉर कंजम्पशन, जैसे कि ग्रास हॉपर है या मील वर्म्स है, वर्म्स है कुछ कुछ, या
2: मैंने सुना हुआ है। हाँ,
0: लेकिन एंट्स उसमें नहीं है। ओके, दे आर नॉट द अप्रूव्ड स्पीशीज। अब ये जो रेस्टोरेंट है इसने इम्पोर्ट की ब्लैक एंट्स फ्रॉम थाईलैंड एंड द यूएस, एंड क्या है कि गार्निश ऑफ अ पैलेट क्लेंजिंग सोर्बे उसने यूज किया, ठीक है। एंड फिर प्रोसिक्यूटर्स ने तो पढ़ लिया, उसको धर दपोचा और साथ में उसको बोला चल बेटा तू अंदर चल, तेरे 15-course मेनू में एंट्स को सर्व करना वॉज नॉट अलाउड। ओके, सो इसीलिए प्लीज, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? कैसी क्रंची और सावर लगी होंगी ना
3: डिजर्ट? तभी कहते हैं कि एंट इन एनी वे अप्रिशिएटेड फ्रॉम फार, क्योंकि वो वैसे ही वाली चीज है, चाहे ये एंट हो या वो एंट हो। ना, आप बिल्कुल नहीं खा सकते। नो, नथिंग, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ओ माय गॉड,
0: आई कैन फील देम रिगलिंग इनसाइड।
3: कैन यू स्टॉप इट?

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट दस का बीस दस का बीस दस का बीस दस
0: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है टाइम टू रेज द बार
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल
0: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
4: भूख लगी, जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस की बात होती तो रेणुका आप कौन सी पदवी लेना पसंद करती?
1: डिपेंड करता है मैं नहीं आंसर करूंगी ऐसे ही ब्लैंक वाला, मुझे पता है इसमें कोई कैच है।
0: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है।
1: फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड आवर चल रहा है इस समय हमारा रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती मैडनेस विद रेणुका एंड अंतरा।
0: हाँ जी तो कुछ ऐसा हुआ कि अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेचारा बच्चा की क्या ही वो एक्सप्रेशन देता, बट कुछ ऐसा हुआ कि भाई स्कूल में जो है स्पोर्ट्स डे रेसिंग वेसिंग हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। तो वो जो वाला होता ना कि फर्स्ट पेडेस्टल फिर सेकंड फिर थर्ड, वहां पे बच्चों को खड़ा किया जाता है और उनके प्राइजेस और मेडल्स पहनाए जाते हैं, तो ये तीनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। बात हैरानी की ये थी कि जो फर्स्ट प्राइज विनर था ठीक है, उसको मिलती है बहुत सारी बहुत खास खास किताबें, लाइक रियली नाइस बुक्स, एंड द सेकंड प्लेस विनर गेट्स अ गेमिंग पीसी।
1: ओह अच्छा।
0: एंड द थर्ड प्लेस विनर गेट्स अ फोन।
1: वेरी नाइस।
0: सो and this you can see the child like he's holding अपना, जैसे वो होता है ना कि वो बड़ा सा चेक दे देते हैं just to show everybody, वो अपना प्राइज का फोटो प्लेकार्ड लेके खड़ा जरूर हुआ था लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सच्चाई बता रहे थे जब वो साइड बाय साइड देख रहा था कि हेलो। और उस फर्स्ट वाले बच्चे की माँ खुश, मेरे बच्चे को तो बुक्स मिल गई है यहाँ पे, वाह।
1: हाँ बिल्कुल सही है, माँ बाप के लिए फर्स्ट आओ और अपने लिए मेरे ख्याल से थर्ड आओ। क्या रखा है तू सोच। वैसे जो प्राइस दे रहे थे उन्होंने भी सोच समझ के दिया, भैया फर्स्ट है इसको पढ़ाई करने का शौक है, इसको और किताबें दो, ये तीसरा है, इसने तीसरे वाले ने आगे जाके यही काम करना है, इसको आज से प्रैक्टिस करने दो अपने फोन पे, जो करना है करो भाई, हम तो थर्ड आके खुश है जिंदगी में। बिल्कुल वी आर फाइन, वी आर नॉट कॉम्पीटिंग इन दिस वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी पीपल टू कॉम्पीट। छोड़ो तुम बढ़ो आगे सानू की।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आइए आइए आइए, रेडियो मस्ती 24/7 पर आपका इंतजार कर रही है अंतरा।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: हाँ जी, हाँ जी साहब, में रेणुका भी है। वो जो आवाज थी ना, वो इन्हीं की थी, जस्टिन।
0: अच्छा, छुट्टी पे जब जाते हैं राइट, एंड कहीं भी चले जाओ, खैर हमारा भारत इतना महान है कि भारतीय हर जगह मिल जाते हैं। ऐसी कोई खास ही जगह होगी जहां पर कोई भी आपको इंडियन नहीं मिलेगा छुट्टी पे, राइट? सो वेल, और अगर थाईलैंड की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से वहां तो नुक्कड़ नुक्कड़ पर इंडियंस मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन कोई सेल्स के कोई ट्रिप्स होते हैं कि भाई आपने अपने बहुत अचीवमेंट करा अपना टारगेट, तो आपको थाईलैंड की ट्रिप मिलते हैं। सो यू नो इट इज लाइक वेरी वेरी कॉमन। एंड फुकेट जाने का तो वैसे ही भारतीयों को बहुत ज्यादा शौक है, राइट? सो हाल ही में हुआ कुछ ऐसा कि एक होटल फ्रॉम फुकेट से एक वीडियो हो रहा था वायरल, और उसमें अ ग्रुप ऑफ इंडियन टूरिस्ट वर एंटरिंग द होटल का स्विमिंग पूल वेयरिंग देयर रेगुलर अंडरगार्मेंट्स इंस्टेड ऑफ एनी स्विमवेयर। सो बेसिकली ये वाला भी साइट हमने बहुत जगह देखा है, राइट? कि चलो यार पूल में ही तो जाना है, इट इज लाइक तालाब में ही तो जाना है, कच्चे बनियान में चले जाओ, है ना भाई? तो अब ये चीज के बाद में होटल का स्टाफ उनको जाके बोलता है, सॉरी सर, देयर इज अ ड्रेस कोड एंड आप ऐसे नहीं जा सकते थाईलैंड, या कहीं भी नहीं जा सकते यार, इवन कॉन्डो के पूल में नहीं जा सकते। बट हैव यू सीन, कई बार हम देखते हैं कि कॉन्डो के पूल्स में भी बच्चों को कपड़े उतार के बोलते हैं जा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है।
2: आई नो,
0: क्या है ये?
2: I have seen this.
0: Exactly, कोई हाइजीन स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फैसिलिटी के रेगुलेशंस होते हैं, क्या है ये? तो कैसे डील करे ऐसे? इफ यू सी समबडी डूइंग दैट एंड देयर इज नो ऑफिशियल अराउंड, तू कुछ करेगी या यू विल जस्ट इग्नोर इट?
2: नहीं नहीं, आई थिंक तुम पेनल्टी लगा दो ना, कि अगर आप पाए गए तो आपको इतने, जैसे ही जहां पे देखो जिसको ना उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, जैसे पैसे इन्वॉल्व हो गए ना अपने आप सब ठीक हो जाएगा।
0: ना ना ना ना, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई ऑफिशियल नहीं है और तुम देख रही हो किसी को ऐसे पूल में जाते हुए, तो विल यू स्टॉप द पर्सन और यू विल नॉट से एनीथिंग?
2: नहीं, मैं चुपचाप जाकर बता के आ जाऊंगी, उनसे जाके लड़ेगा कौन?
0: हाँ, तो मतलब ऑफिशियल्स को जाके बता दोगे, राइट? कि भाई आप इनको कुछ समझाओ, इनके कच्चे इतने गंदे हो रहे हैं और ये पानी में घुस रहे हैं, हम कैसे जाएं? गुड पॉइंट।
2: सो आई विल नॉट गो एंड कॉन्फ्रंट देम, आई जस्ट डू माय सिविल सिटीजन ड्यूटी।
0: शाबाश, छुप के, बेसिकली स्निचिंग। गुड जॉब।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आइए जी आइए, आपका स्वागत करते हैं मस्ती मैडनेस की इस मैड सी दुनिया में. आपका फ्राइडे, चलो चलो और भी कुछ बताते हैं.
3: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, फ्राइडे है, अंतरा जी ने बताया है, मस्ती मैडनेस है ये भी बताया है, रेणुका है यहाँ पर और अंतरा है, ये मैं बता देती हूँ. और अगली खबर इनकी है, बताइए बताइए, वो भी आप बताइए.
2: हाँ जी, खबर कुछ ऐसी है कि भाई पता नहीं आजकल ये मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर्स को क्या ही हो गया है. रेणुका जी हाँ, आओ आपको दुनिया में लेकर जाए इस मल्टी मिलियनेयर की. रेणुका मेरे को ताड़ रही है कि हम बात तो कुछ और करने वाले थे, लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे. उसके बाद बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस,
4: लोग
2: अपनी पर्सनैलिटी जो है, हम चाहते हैं कुछ लोग जरूर अपनी पर्सनैलिटी बदले, बट इतनी भी नहीं बदले. सो जापान के ये 26 साल के मिलियनेयर है और इनका नाम है जासो. एंड ही हैज स्पेंट 200, ही इज अ मिलियनेयर बिलियनेयर कुछ भी बुला लो, बहुत पैसा है भाई के पास, ठीक है. 220 करोड़ खर्च किए हैं टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ असली कुत्ता, सर्जरी करा करा.
4: अरे यार, पैसे ज्यादा आ जाए तो इंसान को समझ नहीं आता वो कहाँ पे खर्चे है ना. आई थिंक यही प्रॉब्लम होती है.
2: like, भाई इतने पैसे लेकर तुम कुत्ते बन गए.
4: हाँ ठीक है, मतलब चलो, he is faithful, but the point is, what is the idea? Actually, क्या है इंसान को, इसीलिए मैं हर बार देखो बोलती हूँ ना कि मेरा मन करता है कि सोशलिस्ट होना चाहिए हर जगह. मतलब कि बराबर के पैसे, हर इंसान के पास बराबर के पैसे होने चाहिए. कितना मेरा डेप्थ में ख्याल है. तो अब ये इंसान बनेगा या अब हो गया ये परमानेंट?
2: नहीं, like he has done बहुत ज्यादा सर्जरीज करा लिए ना भाई ने. भाई अब वो ना, वो वापस उस ओरिजिनल फॉर्म में जाना तो इम्पॉसिबल है. लाइक हिज फेस आल्सो लाइक लुक्स लाइक Yeah,
4: it's okay because you remember Antra, last time we were talking about somebody who converted himself into a tiger or something, right? And we said that it is not those people who should be punished. It is the doctors who agree to do it for a sum of money and drama who should be put behind bars because this is not right. है ना?
2: This is so not right. I mean, I feel bad. पर पैसे मतलब वही लग रहा है, और भी ज्यादा खराब लग रहा है क्योंकि भाई के पास पैसे बहुत थे जो कहीं और खर्च हो सकते थे, लेकिन भाई selected something like this. Yeah.

0: वेलकम वेलकम रेडियो मस्ती 24/7। यहाँ पर जो अगला हमारा गाना आने वाला है, तौबा तौबा, वाकई हमारी न्यूज के जैसा है। गुड मॉर्निंग।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी।
2: एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल न्यूज, हमको ये लगता है तौबा तौबा, क्या ही कर रहे ये लोग, क्यों ही कर रहे ये लोग।
0: हाँ तो गुड मॉर्निंग तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस समय तो फ्राइडे की सुबह है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं ऑन कोर तो अंतारा सैटरडे की शाम है और इस समय 8 बजने वाले हैं बहुत ही जल्द, सुबह के 10 और रात के 8। क्या बात है। अब ऐसा है, अगर तुम गई हो जापान, और जापान में अगर इनफॉर्मल स्ट्रीट लेवल की बात करी जाए तो वेल देयर इज समथिंग कॉल्ड द जेके एली, राइट। अब बहुत से लोग जो गए हैं वो जानते होंगे, प्राइमरली टोक्यो के एरियाज में है, जैसे कि आकिहाबारा एंड इकेबुकारो, ये सारे के सारे कंट्रोवर्शियल जेके बिजनेस के साथ में दीज आर एसोसिएटेड। दैट मींस हाई स्कूल गर्ल, इन जगहों पर जो यंग लड़कियां हैं या लड़कियां वो ड्रेस्ड इन स्कूल यूनिफॉर्म्स, दे गेट पेड कंपेनियनशिप सर्विसेज, जैसे कि वॉक्स के लिए चलो, चैट्स हमारे साथ बैठकर करो, या कैफे डेट्स, राइट। और कस्टमर्स जो है वो पे करते हैं आवली या फिक्स रेट्स फॉर एक्टिविटीज लाइक वॉक्स, कॉन्वर्सेशन, टेबल टाउन, एंड ऑफकोर्स ग्रे जोन है थोड़ा सा, क्योंकि लीगली इनोक्यूअस कंपेनियनशिप या रिफ्रेशमेंट सर्विसेज कह लीजिए, वॉच डॉग्स और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो कहते हैं ये काफी ग्रे जोन है, ये सही नहीं है। और इसीलिए दे से कि अंडर एज प्रोस्टिट्यूशन या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यहां पर हो सकता है, लेकिन फिर भी चले चला जा रहा है। तुम गई हो या फिर तौबा तौबा?
2: नहीं, आई एम स्टिल ऑन द तौबा तौबा साइड, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ। बट जापान के बारे में कितनी सारी इस तरह की सर्विसेज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दैट यू कैन रेंट अ फादर, यू कैन रेंट अ बॉयफ्रेंड, यू कैन रेंट अ गर्लफ्रेंड, यू कैन रेंट अ पर्सन फॉर डूइंग नथिंग ऑल्सो, जस्ट हैंग अराउंड विद यू ऑल डे,
0: और इवन हग यू और क्राई विद यू और क्राई फॉर यू। सो ये सारी चीजें जापान में ही हैं, और मुझे लगता है कि इट्स वेरी कुछ अलग ही है। स्कूल गर्ल्स के साथ में क्या फेटिश है, ये मुझे अभी तक समझ में आता नहीं है।
2: फिर फेटिश, लेट अस नॉट इवन गो देयर, एट लीस्ट ऑन मस्ती मैडनेस आई थिंक बोथ ऑफ अस नो फेटिश कैन गो टू एनी लेवल,
0: एनी लेवल। इन जापान पहले भी मैं एक बार ये कर चुकी, उसके बाद हम बहुत सारे मैसेजेस आए थे, ओके समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो तौबा तौबा।

0: fresh. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's Top Chart Busters.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
2: I love you, रसना।
1: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: देखते ही देखते देखिए ना, जैसे शो समाप्त होने वाला है वैसे ही अगस्त का महीना भी बस आया और गया।
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है।
0: But I love this time of the year, Anthra, because it's the beginning of the major, major festivities, right? It is absolutely amazing. बताओ बताओ कौन सा फेस्टिवल है अगले हफ्ते, बताओ बताओ।
1: मुझे तो ये वाला टाइम पीरियड ही इतना मस्त लगता है। इट स्टार्ट्स विद नेशनल डे का सेलिब्रेशन एंड देन बैक टू बैक इतनी सारी चीजें होती रहती है, जैसे अगले हफ्ते है भैया मेरे और बहना मेरी राखी के बंधन को निभाना, रक्षा द बंधन वी आर टॉकिंग अबाउट। आप हमें भी बांध सकते हो, हम आपकी रक्षा करते हैं कितनी सारी चीजों से,
0: है ना,
1: सो दैट नेगेटिविटी आपको टच भी करके ना जा पाए।
0: कौन करते हैं?
1: हम करते हैं।
0: मैं तब से बोल रही हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर अ भाई। पिछले 17 सालों से मैं ऑन एयर बोल रही हूँ मुझे एक भाई चाहिए,
1: खोज नहीं करता हुई है।
0: हाँ, और मैं वो भाई ढूंढते ढूंढते खुद भाई बन गई हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भाई नहीं मिला। खैर भाई छोड़ो, रक्षाबंधन इज ऑन 28th, जाओ ज्योति स्टोर और जाके अपने लेटेस्ट स्टाइल के जो राखीज हैं वो लेकर आओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। साथ में पूजा की थालीज एंड एवरीथिंग विच यू कैन गेट ओनली एट ज्योति स्टोर्स, कैंबल लेन, सेरंगून रोड, राइट?
1: या और यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो, jothijyoti.com.sg पर जाकर बिल्कुल आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो।
0: बिल्कुल, और जब जा ही रहे हो तो उसके थोड़े दिनों के बाद में हमारे गणपति जी घर आने वाले हैं, तो बप्पा को वहीं से जाकर आप अपना अपनी पसंद की जो आपको मूर्ति चाहिए वो बिल्कुल आप लेकर आ सकते हैं और तैयारी शुरू कीजिए। सारा पूजा का सामान, एवरीथिंग इज व्हाट यू विल गेट देयर, एवरीथिंग एट ज्योति स्टोर्स। एक्चुअली अंतरा, द फर्स्ट शॉप आई एवर वेंट टू फॉर माय फेस्टिविटीज वाज ज्योति स्टोर्स व्हेन आई केम टू सिंगापुर मोर देन 20 ईयर्स बैक, एंड आज तक एग्जैक्टली दैट इज द प्लेस। और कोई जगह ही नहीं है पूरे सिंगापुर में। तुम्हें क्या लगता है घर घर में जो बेचते हैं, आई डोंट थिंक यू स्टिल गेट व्हाट यू वांट, राइट? बट ज्योति गिव्स यू लाइक,
1: मैं तो हमेशा कहती हूँ कि दिस नो थिंकिंग about twice about it, like whenever you think about घर में कोई पूजा करना है या फिर कोई त्योहार आने वाला है, it is Jyoti stores.
0: Absolutely.
1: You always go there. Absolutely. And you always get every single thing over there. मेरी मम्मी ऐसे कभी कभी चीजें बताती है मुझे इतने पर्टिकुलर जो कभी शायद उनको कानपुर ना मिलता हो, मैं कह रही हूँ मेरे सिंगापुर में मिलता है।
0: वाह, ज्योति स्टोर्स में मजा आ गया। सो भाई ज्योति स्टोर्स जाओ, एक चक्कर तो लगा के ही आ जाओ। आई एम श्योर आप नहीं भी कुछ सोच के जाओगे तो भी आपको कुछ पसंद आ जाएगा, बिकॉज that amazing that shop is, and of course it's got this generations behind it. तो भाई ऐसे वैसे नहीं है, ज्योति स्टोर्स is where you need to go, and अभी की हम need to go also. चल माशुका चले, चले माय माशुका,
1: एग्जिटा मारेंगे बिल्कुल फ्राइडे है।
0: एब्सोल्युटली, इसी गाने के साथ में हम निकल रहे हैं यहाँ पर, और आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? हमारे साथ जुड़े रहना, हम तो जुड़े रहेंगे ही आपके साथ। चलो ओके बाय।
1: रेणुका सेक्सी आवाज में बोल के जाना जरा।
0: जा रही हूँ, मिलूंगी मंडे को, बाय।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना.
3: भाई की डन है मम्मा.
4: ड्यूटी
5: लास्ट टाइम मैं उठा था ना.
4: मैं उठता था.
2: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं. इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन. राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: जी।
1: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.
1: आग, कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर, रौनकें, कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम?

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
3: बाय की डन है मम्मा।
4: ड्यूटी
5: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

तैन न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आ

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।